0: that urgency, the overall schedule, the plan, everything, the itinerary got changed. The forces were, there was a most of the forces security cover is at the Amarnath Yatris, not here. So immediately they had to cater for everything. So the thing is, this lady probably lost her patience. That 5 hours of wait is quite a lot. I understand that. And being from the forces, I have dealt with people who have hurled abuses, who've lost their cool, who have a nervous breakdown. So the security forces, we are already briefed that in case somebody gets aggressive, you got to go the opposite direction. You got to totally melt down. You got to calm them. You got to be friendly with them. You got to make them understand that there is no alternative. They have to now go by road. And they are VIP dignitaries. It's a defense minister and your present army chief. They are not any normal people. So, because of this contingency, unfortunately, this delay of 5 hours took place. The young girl lost her patience levels.
1: All right, let's now shift our focus to more developments coming in at this hour. Now, Wendy TV's inside track on the cabinet meeting yesterday revealed that the agenda was not just policy but also a surprise report card. That's right, sources tell NDTV that ministers were handed a report card on their social media performance. And this study report tracked activity and engagement across Facebook, Instagram and X from August 1st to August 15th. From May 1st to August 15th, my apologies, with the Prime Minister topping this list. Sources say that ministers have now been advised to boost their presence on social media. Meanwhile, the government is also planning a Gen Z outreach push. Sources say that soon ministers will visit universities across the country under a One Day, One University initiative. And this is now being conducted to engage with the students, discuss key issues, and highlight government schemes after the student-led paper leak protests. Tracking more updates on this, NDTV's Vishnu Shom has spoken to the new BJP IT cell chief, Deepak Maskey. Let's also listen in to what he has to say.
2: I'm just curious to know how important is it for the BJP with elections coming up to spread the message not only of the government but of the party. How is social media essential for communications more than ever before?
3: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी. हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है.
2: जी
3: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
2: दीपक जी,
3: ठीक.
2: हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
3: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं.
2: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
3: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही. यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट है, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीजें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं.

0: तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना। अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना।
1: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे। शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
0: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
1: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए। आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
0: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे। अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके।
2: All right, on that note, let's turn our attention now to a significant diplomatic visit to Jammu and Kashmir, and one that has already produced a reaction from Pakistan. US Ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir in his first visit to the region as ambassador, and the first visit by a sitting US Ambassador to Jammu and Kashmir in more than 6 years. After meeting Chief Minister Omar Abdullah in Srinagar, the ambassador described Jammu and Kashmir as an important part of India and said that he was quite optimistic about the region's future. He's also indicated that Washington could reconsider its travel advisory, although he's made it quite clear that he's not announcing any immediate change. But Pakistan has now formally protested Ambassador Gore's remarks and summoned the senior-most American diplomat in Islamabad to register a protest. Also, we can't ignore the fact that this is the first visit of a top US diplomat to Jammu and Kashmir after Operation Sindoor. Therefore, it carries significance for the broader US-India strategic engagement as well. Listen in to the ambassador's remarks.
3: Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting. And we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
2: Well, let's turn our attention now to breaking news. We're tracking. The NCERT has reconstituted the political science book this time, and as per reports, RSS linked members are in the NCERT panel. The NSUI, meanwhile, has flagged the RSS influence as well, as far as this latest step is concerned. The NCERT has reconstituted the textbook development team for classes 11 and 12 political science, with a mandate to integrate cultural rootedness, Indian knowledge systems and inclusion, with at least four of the members having direct or indirect links with the RSS, you must note. The team has been asked to develop the Case 11 textbook by November and the Class 12 book by July next year. That's the latest we can disclose at the moment. And the textbook team will be led by academic and political analyst Sandeep Shastri, who's also the vice president of Karnataka-based Deemed University. We have a reaction lined up for you. Listen in.
4: आरटी की राजनीतिक विज्ञान की किताबें लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तय करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अंदर जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हमने तो किया नहीं है, खड़गे साहब ने तो किया नहीं है, सोनिया गांधी जी ने तो किया नहीं है, राहुल जी ने किया नहीं है, जो 80 साल से हो रहा हम वही कर रहे हैं।
1: आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब, गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है।
2: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वो वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, आज वो सौभाग्य का दिन आया है कि संसद ने ये तय कर दिया है वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा और वंदे मातरम का अपमान अपराध होगा। वंदे मातरम प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय गौरव का, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का। वंदे मातरम का अपमान हमारे देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है, और अभी अपराध है। इसलिए कांग्रेस ने अगर पूरा वंदे मातरम नहीं गाया तो यह भयानक अपराध किया है।
3: सीतापुर की बैठक में वंदे मातरम को लेकर के जो फैसला हुआ दो अंतरे गाने का, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग हो गई है।
4: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है कि हर बात में अपना हस्तक्षेप करते हैं, और जो हमें गाइडलाइन खड़गे जी ने कल दी है, जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम उसी के मुताबिक फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे।
5: Tejshree is tracking the latest details for us. She joins us live at the moment. Tejshree, the Congress, they're saying this is simply the continuation of a 90-year-old practice, with Mr. Kharge challenging the BJP to file cases against Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel if the version Congress thinks is somehow improper.
6: Well, it's absolutely, that's the logic the Congress party has been giving, that, you know, since 1937, we have been singing just the two paras as our tradition of Congress party is concerned. And now, given that in 2026 as well, we'll be following the same tradition and culture, and we'll be just singing two stanzas no matter what. And if you have to put us in jail, if you have to file complaint against us, go ahead, we are ready for it. But before that, you also have to file an FIR against Patel, Nehru and Mahatma Gandhi as well, is what the Congress party has been stating. However, now if we talk about as to what the BJP has been saying, we just heard number of ministers of the BJP who have been, stating that this is nothing but just an insult to Vande Mataram, and this is the anti-India mindset of the Congress party that's been exposed by their statements.
5: Tejshree, we'll of course continue to track how the Congress and the opposition parties are reacting. As always, thanks so much for sharing that update. All right, on that note, let's turn our attention to the further stories we're tracking at the moment. You know, the cabinet meeting yesterday, that appears to have had an unusual item on the table, a performance review of the government's social media presence. NDTV's inside track on the cabinet meeting yesterday reveals that on the agenda was not just policy, but also a surprise report card. We've learned from sources that ministers were given a report tracking their activity and engagement across the platforms of X, Facebook and Instagram, covering the period from the 1st of May till the 15th of August. And sources are telling us ministers were handed a report on their social media presence. So, you know, a social media review of ministers, that may sound like a communications exercise, right? But the timing is interesting. Sources suggest that the government is also preparing a more direct outreach to young voters, with our sources indicating that ministers could soon begin visiting universities under some proposed One Day, One University initiative, engaging students and talking about government programs and schemes essentially. But this comes after sustained student mobilization around the paper leak issue and wider concerns around education and crucially jobs as well. And at a time when politics and social media are more linked than ever before, the BJP has entrusted a little-known party leader from Chhattisgarh to lead its digital machinery. Speaking to NDTV soon after his elevation, Deepak Mahaske said that Instagram is where his main focus is going to be. Vishnu Shom spoke to the new BJP IT cell chief. Here's what he told us about the BJP.

0: his roadmap.
1: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
2: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी. हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है.
1: जी,
2: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुँचाना.
1: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
2: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
1: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
2: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके.
0: All right, in other crucial news you must note, the reconstitution of the NCERT panel responsible for drafting political science textbooks for classes 11 and 12 has now opened a larger debate over who gets to shape what students are taught about India's politics, about our democracy and about our history crucially. The 20-member textbook development team has now been tasked with preparing the new textbooks. But the controversy is over the backgrounds of some of its members, you must note. Among those named are Yadunath Deshpande, who has held organizational positions in the ABVP, former ABVP National Secretary Vandana Mishra, Prashant Divekar, who has been associated with the RSS link Janana Prabhodini. The Congress has now alleged that the government is using the textbook revision process to bring people with an RSS ideological background into institutions that are responsible for shaping school curricula. Now, Congress leader Pawan Khera has accused the government of recruiting people with RSS mindsets. The Congress and the NSUI has reacted to the matter. Listen in.
3: NCERT की एक नई कमेटी गठित की गई है,
4: उसमें भर दिए हैं, मैंने
3: उसमें देखा, मैंने संघ की पृष्ठभूमि के कई लोग हैं, क्या आपके
4: संघी भर दिए हैं? संघियों का आपको मैं उदाहरण दूं, आप ही में से किसी एक के चैनल में परसों एक संघी ने क्या कहा था खड़गे साहब के लिए, कि दलित की मानसिकता मतलब गुलामी की मानसिकता, ऐसी है ये संघ की मानसिकता, ये बनाएंगे पाठ्यक्रम.
5: कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो हर इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इसको कब्जे में लाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार वो लगे हुए हैं, और जब तक कि उनको पलटकर हमारी सरकार ना आए, तब तक इसको झेलना पड़ेगा.
6: एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की किताबें लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तय करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अंदर जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को जो है इस समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। और इस तरीके से जो है एनसीईआरटी की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था पर जो है बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि समिति को तुरंत

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जय

0: अपराध किया है. सो बीजेपी स्टैंड इज दैट इफ एनी इंडियन नेशनल इफ दे वायलेट द लॉ ऑफ द लैंड इफ दे वायलेट द गवर्नमेंट ऑर्डर देन इट वी शुड बी कंस्ट्रूड एज एन क्रिमिनल एक्ट एंड सो अकॉर्डिंगली केसेस शुड बी फाइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन. सो दैट इज एग्जैक्टली बीजेपी स्टैंड एंड क्लियरली आफ्टर कांग्रेस स्टेपिंग अप द एंटे ऑन दिस इशू क्लियरली द पोलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स इज हॉटिंग अप ऑन द वंदे मातरम इशू. दैट्स राइट.
1: Right, Himanshu, thank you so much for getting us those details. And staying with news of the Vande Mataram, the political row has in fact intensified, like Himanshu was breaking it down for us, with the Congress reiterating its stand when it comes to the national song. While we also on the other side have the BJP chief, we're talking about Nitin Abi there comparing Congress with Muslim League and saying that Congress has now formalized the insult of Vande Mataram. This comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on the issue with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. The Congress General Secretary, K.C. Venugopal, has said that the party would abide by the decision taken by its leadership back in 1937, 90 years back, and that there was no confusion over its position. Going on to say that Vande Mataram is an emotional issue for the party, while accusing the BJP of only politicizing the issue.
2: सर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस. अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है.
3: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक. इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं. इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ. ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं. ये हैं असली देश के दुश्मन. हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे.
2: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
3: नई परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है. इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है.
2: बीजेपी अध्यक्ष नितिन अभी ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है.
3: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया. अब
4: फ्रॉम दैट टुडे पीडब्ल्यूसी में कांग्रेस प्रेसिडेंट कैटेगरिकली टोल्ड यस्टरडे इटसेल्फ ही सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस द क्लैरिफाई कर दिया. बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया. हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है. 1937 का रेसोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट वट एवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस. वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली. दिस इज अवर डिसीजन.
2: वंदे मातरम को लेकर के जो आप लोग ने कहा कि दो अंतरे ही गाएंगे, बीजेपी कह रही है कि नई मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस.
5: 80 साल से दो अंतरे ही गा रहे हैं. हमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से. कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है. कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज नया तो हम कुछ कह नहीं रहे. हम तो जो 80 साल से कर रहे हैं वही कर रहे हैं.
2: वो कह रहे हैं कि नई मुस्लिम लीग.
5: और भाई वो कुछ भी कहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम जो 80 साल से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हमने तो किया नहीं है. खरगे साहब ने तो किया नहीं है, सोनिया गांधी जी ने तो किया नहीं है, राहुल जी ने किया नहीं है. जो 80 साल से हो रहा हम वही कर रहे हैं.
2: सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर के जो फैसला हुआ दो अंतरे गाने का, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग हो गई है.
6: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है कि हर बात में अपना हस्तक्षेप करते हैं और जो हमें गाइडलाइन खड़गे जी ने कल दी है, जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम उसी के मुताबिक फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे.
7: वेल, बीजेपी हैज़ अ न्यू फाउंड पेट्रियटिज्म बेस्ड ऑन सोशल मीडिया ट्रोल्स, पेट्रियटिज्म ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, हु आर अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट. आरएसएस एंड हिंदू महासभा ऑलवेज यूज द सेम Vande Mataram to divide Indian people. So there's a difference. We are quite confident of the fact that Vande Mataram cannot be a dividing song. It is a uniting song. It was not BJP's, RSS, Hindu Mahasabha's song. It was Congress's song. It was Congress's song since 1896. The first Indian flag, which was unfurled in Stuttgart, Germany, by Madam Bikaji Kama, had Vande Mataram written on it. एवरी सेशन ऑफ कांग्रेस

0: initiative that the government is now starting. This is basically to engage with students, discuss key issues and highlight government schemes after the student-led paper leak protests that took place across the country, particularly in Jantar Mantar here in Delhi. And also getting you a very exclusive interview with my colleague Vishnu Som, who spoke with the new BJP IT cell chief Deepak Mahaske. He says he's not replacing Amit Malviya. Listen in to where his focus is really going to lie when it comes to social media.
1: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message not only of the government but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
2: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी. हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
1: जी.
2: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही हैं, झूठ फैला रही हैं, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
1: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेन जी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
2: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
1: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
2: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट है, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सके.
0: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Don't go anywhere.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं, इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन, हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
0: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है, इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
0: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे, इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया।
2: वंदे मातरम इशू सर, व्हाट इज योर रिस्पांस?

0: Because that is both the things are songs are emotionally touched with Indian freedom struggle. BJP can say anything, but because they didn't have any role in freedom struggle. Not even single BJP, somebody was there, they were totally apologized, you know that. To Britishers. These things leave it. They cannot question our nationalism.
1: वंदे मातरम को लेकर के जो आप लोग ने कहा कि दो अंतरे ही गाएंगे, बीजेपी कह रही है कि नई मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस।
2: 80 साल से दो अंतरे ही गा रहे हैं, हमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज नया तो हम कुछ कह नहीं रहे, हम तो जो 80 साल से कर रहे हैं वही कर रहे हैं।
1: वो कह रहे हैं कि नई मुस्लिम लीग,
2: और भाई वो कुछ भी कहें कुछ भी कहें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो 80 साल से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हमने तो किया नहीं है, खड़गे साहब ने तो किया नहीं है, सोनिया गांधी जी ने तो किया नहीं है, राहुल जी ने किया नहीं है, जो 80 साल से हो रहा हम वही कर रहे हैं।
1: इधर उसी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर के जो फैसला हुआ दो अंतरे गाने का, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग हो गई है।
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आदत है कि हर बात में अपना हस्तक्षेप करते हैं, और जो हमें गाइडलाइन खड़गे जी ने कल दी है, जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम उसी के मुताबिक फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे।
4: कल बीजेपी हैज अ न्यू फाउंड पेट्रियटिज्म बेस्ड ऑन सोशल मीडिया ट्रोल्स, पेट्रियटिज्म ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, हु आर अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। आरएसएस एंड हिंदू महासभा ऑलवेज यूज द सेम वंदे मातरम टू डिवाइड इंडियन पीपल, सो देयर इज अ डिफरेंस। We are quite confident of the fact that Vande Mataram cannot be a dividing song. It is a uniting song. It was not BJP's, RSS, Hindu Mahasabha's song. It was Congress's song. It was Congress's song since 1896. The first Indian flag, which was unfurled in Stuttgart, Germany, by Madam Bhikaji Kama, had Vande Mataram written on it. Every session of Congress Party since 1896 starts with Vande Mataram. Every session of parliament, every session of assembly ends with Vande Mataram. This is all Congress party's contribution.
5: Right, let's just also get you more news coming our way, and this is in regard to, in fact, the reconstitution of the NCERT panel tasked with drafting with the political science books, these are the textbooks for classes 11 and 12, that's triggered a political row. We have a 20-member textbook development team that has been tasked with preparing those textbooks. Amongst those, of course, are the names that have cropped up. That includes Yadunath Deshpande, who has held the organizational position in the ABVP. The former ABVP National Secretary. We also have Vandana Mishra. And we have Prashant Devikar, who has been associated with the RSS. So four people in all who have been associated with the RSS are now part of that 20-member team. The Congress now has alleged that the BJP and the RSS are attempting to influence institutions, with the Congress leader Pawan Khera accusing the government of recruiting people with the mindset of the RSS.
1: एनसीईआरटी की एक नई कमेटी गठित की गई है, उसमें भर दिए, उसमें संघ की पृष्ठभूमि के कई लोग हैं, क्या आपकी
6: संघ ही भर दिए हैं? संघियों का आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप ही में से किसी एक के चैनल में परसों एक संघी ने क्या कहा था खड़गे साहब के लिए कि दलित की मानसिकता मतलब गुलामी की मानसिकता, ऐसी है ये संघ की मानसिकता, ये बनाएंगे पाठ्यक्रम।
7: मुझको कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो हर इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इसको कब्जे में लाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार वो लगे हुए हैं, और जब तक कि उनको पलटकर हमारी सरकार न आए तब तक इसको झेलना पड़ेगा।
8: एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की किताबें लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तय करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अंदर जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को जो है इस समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है, और इस तरीके से जो है एनसीईआरटी की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था पर जो है बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, हमारी स्पष्ट मांग है कि समिति को तुरंत प्रभाव से जो है भंग किया जाए, और साथ ही इसके अंदर जो एक स्वतंत्र, एक वास्तविक शिक्षा विशेषज्ञों को और राजनीतिक विद्वानों और जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको इस समिति का सदस्य बनाया जाए, और आरएसएस को हम लोग कहना चाहते हैं, एबीपी को हम लोग कहना चाहते हैं, सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि ये आपकी प्रयोगशाला नहीं है।
9: पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस, वन इज टू अंडरस्टैंड दैट इट टीचेस यू हाउ गवर्नेंस वर्क्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन सर्टेन इन्फ्लुएंसेस इन दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Tamil Nadu want to raise the dam level to 152, while Kerala does not want it to happen. And in fact, Kerala wants a separate dam. So this is some issue that is likely to be discussed. This is what we are picking up from close sources from the CMO office. The second important issue is the fast track court for crimes against women and children. It's something which has also been a national policy and likely funds that has to be moved if these are implemented. This is something which Kerala will also be likely to be demanding. Also importantly, the Chief Minister is looking at a very ambitious project in Kerala, which is of having 18 ports, two major ports, which is Vizhinjam and...
1: I will have to interrupt you there. There is some breaking news coming in. I apologize there for jumping in. But the news coming in is the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress reiterating its stand on the national song. We also have Amit Shah, who has spoken out on it, I believe. In that the Home Minister has spoken out. Let's listen in.
2: Resolution ko follow karte hue, Mahan Vande Mataram Geet ke do hi chand gaane ka faisla kiya hai. Main is samay par pure desh ko yaad karana chahta hoon कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगतो देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: While tracking more updates coming in at this hour, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Mini Marg checkpost in Dras after local police stopped the travel on Mini Marg Zojila Sonmarg Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this. Telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
2: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं और बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर यहाँ से कोई नहीं हिलेगा।
3: उकसाया आपने, उकसाया पब्लिक को,
2: पब्लिक
4: की इच्छा देखी,
2: हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी वादा था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
1: Well, that was the video, and NDTV's managing editor Shiv Varur has now spoken to Captain Yashika H. Tyagi, the former army officer and Kargil war veteran, to get more perspective on this very video. Listen into what she had to say.
5: What goes through your mind when you see this video? I'm sure you've already seen it. I have detailed the reasons why it displays a complete sense of entitlement and ignorance. But as someone who has literally defended the country in areas like this, what goes through your mind when you see someone say, we are Gen Z, and you know, shout at security personnel because her car has been made to wait?
6: Jai Hind Shiv, you have asked me my true thoughts when I heard the sentence, tumhari tankha hamare taxpayer ke paise se aati hai. So let me tell everybody that koi tankha itni

0: ज्यादा नहीं होती है कोई भी तनख्वाह कि सिपाही अपनी जान दे दे। दिस इज प्योरली दैट सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म फॉर द नेशन एंड नाम नमक निशान दैट पीपल गो थ्रू ऑल एक्सट्रीम्स, नॉट तनख्वाह, नॉट टैक्स पेयर का पैसा। एंड देर इज अ डेंजरस कल्चरल टेंडेंसी दीज डेज टूवर्ड्स यूनिफॉर्म पीपल, प्रोबेबली बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ द अथॉरिटी दीज डेज। एंड जस्ट इफ इट नीड्स टू बी चैलेंज्ड, द पर्सन हू स्टैंडिंग बिहाइंड द बैरिकेड इज नॉट मेकिंग द डिसीजंस, द पर्सन बिहाइंड द बैरिकेड इज सिंपली वर्किंग इन ऑपरेशनल कैपेसिटी। यू डू नॉट नो द सिक्योरिटी थ्रेट। इट वॉज द सेम एरिया वेयर बैटल ऑफ कारगिल वॉज फॉट। यू हैव जस्ट मेंशन्ड पुलवामा व्हेन अ कार ब्रीच्ड द कॉन्वॉय। इमेजिन इफ समथिंग लाइक दिस वुड हैपन। एंड ऑफ कोर्स इन दिस टाइम, एट दिस टाइम व्हेन यात्रा सीजन इज ऑन, टाइमिंग बिफोर दैट, टाइमिंग आफ्टर दैट, वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट अ टाइम दैट इज टू बी टेकन लाइटली इन द वैली और द ईस्टर्न लद्दाख।
1: करेक्ट,
0: एंड डेमोक्रेसी गिव्स यू द राइट टू क्वेश्चन ऑफकोर्स, बट इट डज नॉट गिव यू द राइट टू स्पीक पुअरली टू एनी बडी, लीव अलोन अ पर्सन इन यूनिफॉर्म।
2: While defense expert Major Samir Pal Thur, and a retired in fact, also spoke with Managing Editor Shiv Virur for more perspective on this very story, let's also listen into what he had to say.
1: I am personally offended by this woman saying, you know, my taxes pay your salary. I cannot even imagine what veterans and people in the army are feeling. And first of all, I want to commend the army officer and the soldiers over there who so calmly were dealing with her. Major Thur, you know, I am feeling anger today at this woman's behavior. I can't imagine what you're feeling. You've served in these places.
3: I have served for 2 years at the Amarnath Cave. So I've come.
2: From aboard the International Space Station, astronauts Jessica Meir and Jack Hathaway have witnessed stunning northern and southern lights. Meir described one aurora as a snake moving beneath the station with green light reflecting off its exterior. With the sun coming off its active phase, astronauts say the auroras have been especially dramatic. We leave you with these visuals. In space.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: While tracking more updates coming in at this hour, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped the travel on Minimarg Zojila Sonmarg Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this. Telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
2: आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो
3: चलो,
2: कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो हम लोग गाड़ियों, चलो।
3: वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे,
2: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसे ताला लगा दिया, आप अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर यहाँ से कोई नहीं
3: हिलेगा। आपने उकसाया था,
2: ठीक है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना।
1: Well, that was the video, and NDTV's managing editor Shiv Varur has now spoken to Captain Yashika H. Tyagi, the former army officer and Kargil war veteran, to get more perspective on this very video. Listen into what she had to say.
4: What goes through your mind when you see this video? I'm sure you've already seen it. I have detailed the reasons why it displays a complete sense of entitlement and ignorance. But as someone who has literally defended the country in areas like this, what goes through your mind when you see someone say, we are Gen Z, and shout at security personnel because her car has been made to wait?
5: Jai Hind Shiv, you have asked me my true thoughts when I heard the sentence, tumhari tankha hamare taxpayer ke paise se aati hai. So let me tell everybody that koi tankha itni zyada nahi hoti hai, koi bhi tankha, सिपाही अपनी जान दे दे। दिस इज प्योरली दैट सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म फॉर द नेशन एंड नाम नमक निशान दैट पीपल गो थ्रू ऑल एक्सट्रीम्स, नॉट तनख्वाह, नॉट टैक्स पेयर का पैसा। एंड देर इज अ डेंजरस कल्चरल टेंडेंसी दीज डेज टूवर्ड्स यूनिफॉर्म पीपल, प्रोबेबली बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ द अथॉरिटी दीज डेज। एंड जस्ट if it needs to be challenged, the person who's standing behind the barricade is not making the decisions.
4: Yeah.

0: Congress events. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. The Congress said the party would abide by the decision taken by its leadership back in 1937 and that there was no confusion over its position. You have the Congress also hitting back at Amit Shah's comment.
1: Congress ka ye nirnay keval aur keval इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है. मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं. अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी. ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद

0: उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
1: वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है।
2: कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी का कांग्रेस था, ये कांग्रेस सोनिया गांधी का कांग्रेस है, राहुल गांधी का कांग्रेस है, जो भारत से नफरत करता है। ये सोनिया गांधी शादी के 15 साल बाद तक भारत से नफरत करती रही, भारत की नागरिकता नहीं ली। अब छटपटाने से नहीं होगा, आपके चेहरे बेनकाब हो गए हैं जो 12 साल से आप भारत का विरोध कर रहे थे। आप केवल केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं है, अब पूरे देश में आप मुस्लिम लीग बन जान, कांग्रेस मुस्लिम लीग, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है।
3: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है,
4: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन, हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
3: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
4: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है, इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
3: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
4: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे, इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया। अब
3: मुस्लिम लीग ऑन द वंदे मातरम इशू, सर, व्हाट इज योर रिस्पांस?
5: आई टोल्ड यस्टरडे इटसेल्फ, वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम इज एन इमोशनल थिंग फॉर अस, वी आर इमोशनली टच विद दैट, बिकॉज दैट इज बोथ द थिंग्स आर सॉन्ग्स आर इमोशनली टच विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। BJP can say anything, but they, because they didn't have any role in freedom struggle. Not even single BJP, somebody was there, they were totally apologized, you know that, to Britishers. These things, leave it. They cannot question our nationalism.
6: अमित शाह बोल रहे हैं कि वंदे भारत पे जो कल फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है, आप लोग एक बार फिर से देश में दो तरह की परिस्थिति को डेवलप करना चाहते हैं।
7: यही लोग तो देश को आजादी दिलाए थे, यही लोग संविधान बनाए थे, ऐसी ऐसी बात करते हैं।
6: वो कहते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी है वो वापस से मुस्लिम लीग बनती जा रही है।
7: उनके कहने से तो कांग्रेस पार्टी का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं।
8: कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला, और एक प्रकार से उन्होंने कांग्रेस जनों को निर्देश भी दिया कि जो दो स्टेंजा 90 साल से हम लोग पढ़ते आए हैं, गाते आए हैं, हम वही गाएंगे। कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
6: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy.

0: थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज़ को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती।
1: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
0: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर VIP मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीज़ें करूंगी, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है, तो जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी एक सिटीजन है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था, क्योंकि और मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैडम, क्योंकि
0: जी सर,
1: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको नहीं होता है, VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
0: तो जी हाँ।
1: लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, ये 3 शब्द जो आपने बोला, We are Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज़ किए, We are Gen Z, ये माहौल जो चल रहा है Gen Z प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
0: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज़ बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज़ ये सब चीज़ें फेस करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई, तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीज़ें बोलूँगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज़ अचानक से हो गई, तो मैं अब क्या बोलूं, इस चीज़ को मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज़ ऐसा करती, ये बस गलती से चीज़ हो गई है सर।
1: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला, क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने

0: ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी। स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ। मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफ़ी पहुँचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
1: क्या आप जेंजी जो जनरेशन है मैडम उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेंजी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेंजी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेंजी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसके इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
0: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेंजी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेंजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीज़ें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेंजी जेंजी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेंजी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
1: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं,
0: मेरे साथ अगर पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
1: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो

0: वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज है मैडम।
1: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन

0: मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
1: और मैं आपको ये रिएश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ़, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में,
0: जी सर,
1: ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम? देश के लिए ही तो
0: पब्लिक
1: काम
0: के
1: कर रही
0: लिए सर, हमारे
1: है ना।
0: लिए।
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम
0: जी
1: सब
0: सर, हाँ
1: इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद? उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर, वो सब लोग उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक एक दो दिन की बात है ये, लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए
0: जी
1: जो
0: सर,
1: आपने आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ। और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: All right, so that woman who went viral yesterday using the Gen Z card, apologizing, they're very sorry, apologizing to everyone, including the armed forces, and hopefully the public can leave it at that. With that, we'll sip into a short break. More news on the other side.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्द्र मसाला।
6: New rules of engagement, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
8: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
6: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right, and Center.
6: Hard facts.
8: War struck country.
6: Hard
8: country.
6: Questions.
8: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine.
10: In France. In Italy.
8: At Srinagar.
10: In Iskandar.
8: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
11: Meetha ya namkeen. Chahe jaise khao. 100%

0: All right, up first, some breaking news coming in from Jharkhand, where the court has stopped the government's decision to cancel the exams over which students were protesting in Ranchi. The Jharkhand High Court has stayed the order cancelling the JPSC and JSSC recruitment examinations. Separate petitions challenging the state government's order cancelling these two examinations and appointments were heard by the Jharkhand High Court. During the hearing that took place today, the High Court granted major relief to petitioners by staying the government's order. The stay has brought significant relief now to the newly appointed officers who had approached the court seeking legal recourse. But it's going to, you know, blow up into a huge controversy. This is after the Hemant Soren government accepted the demands of the protesting students. Students who'd been on hunger strike there in Ranchi. And one of their big demands was they wanted the exam cancelled. These exams in which they said that there was, they alleged that the exam was not conducted properly. And they had been demanding that the JPSC and JSSC recruitment exams over the several years be cancelled. But now, after Hemant Soren granted this condition of the students, now the High Court has stepped in and the High Court has stayed that order. So this is going to become a huge controversy. This was after the students had protested for over 20 days, and students had been sitting on hunger strike as well. They had attempted to march to the assembly. But now the big breaking news is that the High Court has stayed the order of the Jharkhand government in which they had cancelled this exam. In fact, when this exam was cancelled and all the recruitment processes that took place under this exam, we saw that there were protests then held by those who had taken the exam and passed and had been appointed as well. So now it's going to become a huge controversy there in Jharkhand with the High Court, they're stepping in and staying the government's order that cancelled the JPSC and JSSC examinations. And this exam is for recruitment in the state services. Well, let's go across to Prabhakar now for more. And Prabhakar, take us through, all these developments, and this is going to become a big controversy in itself, and it's a setback to the state government in a sense, because this is something that they granted after the student protest and now a stay by the High Court.
1: Yeah, big setback, not only for the agitating students, but also for the government, because government actually came under the pressure after this 26 days agitation of students in Ranchi, and they ordered cancellation of examination. Now, remember, when this campaign was happening, when this agitation was happening, there was a small set of students who were also sitting on a dharna at a separate ground, which is the Morabadi Maidan ground. These are the students who actually had cleared these examinations, and they maintained that though there might have been irregularities, there might have been the breach of the system, but they have cleared it through a proper means, through fair means, and they should not be penalized for somebody else's misdeed. So they maintained that there should be a thorough inquiry into it. Even their own candidature should be inquired into, and if they are found to be fair and they have qualified the examination through fair means, then their job should not be taken back. But under the pressure of the agitating students and the way things were building up, the state government actually decided to cancel the examination. Now this petition in the High Court was given by those students who had already qualified and had got the government job. So they petitioned the Ranchi High Court, and Ranchi High Court today has stayed the government's order of cancellation of all the examinations conducted, especially the 40th JPSC and the other examination which were conducted by that particular tainted agency. So a big setback, not only for the Hemant Soren government out there, but also for the students, thousands and thousands of students who were agitating with this particular demand.
0: All right, Prabhakar, thanks so much for joining us with those details. So a big decision there by the Jharkhand High Court, staying the government's decision to cancel those two exams. This was a big, demand of the protesting students in Ranchi. Well, moving on to some other news now. And yesterday, a tourist in Ladakh had gone viral. This is after she confronted security personnel who'd closed a particular road in Kargil, and she hit out at them and she said, "We are Gen Z." And that is what really made this video perhaps controversial and also made it extremely viral because of the way she was confronting the security personnel. The woman was left waiting near the Minimark check post in Dras after local police had stopped them, had stopped travel, in fact, on that particular road. And the holdup was due to travel restrictions in place on that particular stretch. And there was a lot of anger among the people who were stopped. But this particular woman went viral, especially because she used that phrase that we are Gen Z and, you know, we will make these demands and you can't stop us, etc. The various issues that she had raised, where she was arguing and says we will not tolerate this nonsense, telling them that your salary comes from our taxes. Now, the video received massive backlash online and we have now spoken to that woman. First, let's take a look at that interaction that she had, that video that went viral.
2: हम लोग पैसे देके यहां घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहां पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहां पर।
0: Well, now the lady in that video has spoken to us. She was very tearful, very apologetic. She says it's unfair. It was a small part of the entire interaction that has gone viral. Listen into this conversation with NDTV Managing Editor Shivaroor.
3: And speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की. उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहा.
3: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं. हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, you know, my salaries, pay your taxes. And in this video, we can clearly see कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं. तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है. मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए. वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है.
4: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ. क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था. क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है. बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है. अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया. मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है. वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था. अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे. क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी. मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ. मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ. कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार. कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए.
3: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है. तो जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफ़ी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम. मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है. आप भी एक सिटीज़न है मैडम. आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था. क्योंकि और मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
4: जी सर,
3: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम. किसको yes. नहीं होता है VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर, किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना.
4: तो जी हाँ.
3: लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं. ये तीन शब्द जो आपने बोला, VR Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, VR Gen Z? ये माहौल जो चल रहा है जेंजी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
4: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई. तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई. तो मैं अब क्या बोलूं इस चीज को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर.
3: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है. मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला. क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ. मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा. लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था. आप एक पॉइंट, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला.
4: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है. हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी. स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ। मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुँचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
3: क्या आप जेन ज़ी जो जनरेशन है मैडम उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेन ज़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन ज़ी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेन ज़ी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में ये सब बोला जा रहा है, तो इसके इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
4: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेन ज़ी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेन ज़ी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीज़ें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेन ज़ी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेन ज़ी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
3: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं,
4: मेरे साथ पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
3: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीज़न है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
4: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और जे एंड के आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी

0: मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम? देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए।
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद? उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।
2: All right, so that young woman, very tearful, very apologetic, and hopefully it can all be put behind now. Well, some breaking news now coming in, and the BJP plans to organize events across the country to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi's life in public service. In fact, Nitin Naveen will be holding a meeting this Saturday where he's going to review the preparations and what has been planned, as these events will be taking place across the country to mark the Prime Minister's 25 years in public service. Let's go across to Akhilesh for more on this story. And Akhilesh, tell us more about what the BJP is planning. It's going to be a big outreach campaign, and as always the BJP, whenever they do events, they do it in a very big way. Tell us what's planned.
3: Well, on Saturday, BJP President Nitin Naveen will be reviewing the preparations for the celebrations on 7th of October. PM Narendra Modi is going to complete 25 years in public office. Remember, on 7th October 2001, he took oath as the Chief Minister of Gujarat for the first time. And since then, he has been in the public office, first 13 years as Chief Minister of Gujarat, and last 12 years as Prime Minister of the country. So on this special occasion, the BJP and the NDA will be celebrating in the entire country. And BJP President Nitin Naveen has called a special meeting to review the preparations. All the BJP state presidents and general secretary organizations have been invited for this meeting. All the in-charge and the co-in-charge also will be part of the meeting. And what we've been told by the sources that for around 15 days, the BJP will be organizing programs. It will begin on the 17th September when Prime Minister Narendra Modi turns 76 this year. And this will go on till 7th of October. And different programs will be organized, including blood donation camps, Swachhata Abhiyan campaign, and all these programs will be organized in the entire country.
2: All right, Akhilesh, thanks so much for joining us with those details. So big program they're planned by the BJP, and this will be centered around the Prime Minister's birthday as well. With that, we'll sip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: Top focus on Prime 5 today, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. But in this video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, "We are Gen Z. We will not tolerate this nonsense," telling them, "Your salary comes from our taxes." The video has received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, आप अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई नहीं हिलेगा।
2: आप
1: जो समझिए, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: The lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shivarur. Take a look.
3: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहा।
3: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन ज़ी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
4: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर VIP मोमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
3: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
4: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए,
3: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
4: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
3: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
0: And shifting our focus to other big stories that we are tracking for you on Prime 5, Amit Shah chaired the crucial Southern Zone Council meeting in Chennai today. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Keralam Chief Minister V.D. Sathisan and Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, they all were attending that high-stakes meeting in Kovalam. The spotlight, however, was on Vijay and DKS, the Chief Ministers of Tamil Nadu and Karnataka, because the two were seated next to each other, and that's the image on your screens right now. These images are now trending as this comes at the backdrop of the Kaveri and the Mekedatu Dam showdown. Both the Chief Ministers raised the Kaveri water issue. Vijay mentioned NEET and delimitation as well, saying that the southern states should not be penalized for population control.
2: Problems connected to various water issues. They have agreed to call a separate meeting and settle amicably. So I have made a commitment, I have given a commitment to the state of Tamil Nadu before the Home Minister that whatever Mekedatu water is, dam is there, even a single drop of water, except for drinking water of 5 TMC, the rest water will be left to Tamil Nadu itself from the Mekedatu dam. So Tamil Nadu and the Pondicherry shall be rest assured. The dam will be built only for you, not for us.
0: Let's now take you through what each chief minister said during that high-stakes meeting with the Union Home Minister Amit Shah earlier today. First up, the Chief Minister of Tamil Nadu, C. Joseph Vijay, he has demanded fairer fiscal federalism for higher performing states. He's also spoken about respect rule of law in water disputes, of course talking about the Kaveri water issue here, and he also spoke about the NEET examination. He says he wants to eradicate scrap NEET in the state. He says one exam cannot put south states at a disadvantage, and he also spoke about delimitation, where he says that don't penalize southern states for population control. These were the major statements by C. Joseph Vijay. Moving on to the Karnataka's Chief Minister, DKS. He spoke about Mekedatu, which is important for Karnataka and Tamil Nadu. Apart from that, he also said that we need to solve the Kaveri issue, something which was also expressed by the Tamil Nadu Chief Minister. DKS also says that every drop of Kaveri will help Tamil Nadu, and Mekedatu will help farmers in Tamil Nadu as well. Moving on to the Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu. He spoke about how south states must emerge as a key economic force, number one. Number two, he also spoke about center-state trust, which is extremely essential to resolve all these issues. And he spoke about the Godavari Kaveri project for Tamil Nadu as well, saying that divert 500 TMC water through this project. And let's now move across to my colleagues who are joining me live on the show. Vijay, who's joining me live from Chennai, and Vasudha, joining me live from the newsroom. Vasudha, if I can come to you first, I will talk to you about how the Kaveri water issue was at the center stage during this meeting. We've seen DKS and C. Joseph Vijay sitting together, and both of them voicing the same sentiment that is extremely important to resolve the Kaveri water issue.
5: That's right, Rahisha. In fact, yesterday my TVK sources told me that, you know, if officials are present, Chief Minister Vijay might not really want to talk about Kaveri. I liked what DK Shivakumar said today, help me to help you. And he is going on to assure people of Tamil Nadu and Puducherry that the Mekedatu Dam is going to be of help to them. Now, we don't know what the reality is. Chief Minister Vijay, in his submission at this meeting, has clearly said that scientific evidence is going to be important and that all states have to take judicial orders very clearly, which means that he's seeking the centre's intervention to ensure that Karnataka also follows what the tribunal is saying with respect to Kaveri. And of course, DK Shivakumar has pushed for the Mekedatu project. But the most interesting thing is Vijay, Chief Minister Vijay of Tamil Nadu, clearly saying that he urges the union government to provide a clear legislative assurance on delimitation, that no state will suffer a reduction in its percentage of representation in parliament on account of its success in population reduction or stabilization, which means that he's not really insisting on the 543 seats. He's basically saying that don't penalize us for good policies, which also means it could be very similar to what the DMK is saying. At the same time, it could be because the TVK does not have MPs, and probably Chief Minister Vijay has been mindful of the sensitivities that are involved here. He does not want to be seen as someone who is stalling the centre's policies, or for that matter, doing something which may annoy the centre.
0: Right, Vasudha, stay with me. I'll go across to my colleague Vijay as well, joining us live from Chennai. Vijay, while we've spoken about how the Kaveri issue was at the center stage, but talk to us more about how this meeting marked the first formal interaction between Minister Amit Shah and Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay after Vijay's assumption of office. And also talk to us more about how there were also various other issues that were discussed from other states, not just Karnataka and Tamil Nadu, but even Andhra Pradesh.
6: Like I said, that's right. As far as meeting between Home Minister Amit Shah and Chief Minister C. Joseph Vijay is concerned, it is indeed the first meeting. Last night, even when Amit Shah arrived at Chennai to the private hotel, Chief Minister C. Joseph Vijay himself received Amit Shah here and also had an interaction with Home Minister Amit Shah. It was his first meeting between both. Remember, even when Chief Minister Joseph Vijay scheduled visited Delhi, there was a scheduled meeting between both. But however, got postponed due to mismatch of appointment timings between two of them. So now this has happened, very crucial meeting. Like Chief Minister C. Joseph Vijay was sat along with Amit Shah and D.K. Shivakumar. Like Vasudha was mentioning, interstate Kaveri water issue was a very important focus, and delimitation issue also. Beside other state, like as such, Andhra Pradesh was keen on giving bringing a rail corridor to the state, and also Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu thanked Union Minister for recent developments for making for Andhra Pradesh, and also Kerala Chief Minister highlighted Mullai Periyar Dam issue. So these were all the developments as far as other states CM also concerned, and also very importantly, Chief Minister highlighted the NEET issue and also drug abuse, drug trafficking, how to control drug interstate relationship and cooperation to control drug trafficking across southern states.
0: Right, Vijay, slew of issues discussed with Union Home Minister Amit Shah. Stay with me, Vijay and Vasudha. Let's also tell our viewers about the key issues which were

0: Facebook and X. And also apart from that, there was a ranking which was in comparison to the other opposition leaders like Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and Vijay. All those top leaders who are in the opposition, their social media performance was also mentioned. So the idea was to that minister should know where do they stand as far as the reach on the social media is concerned. And apart from that, the government has also decided to launch a program called One University, One Day, which will actually cover all the ministers, and they will be going to different universities and also to the schools to listen to the students and their grievances and also their issues so that they can be addressed in the real time.
1: Right. Akhilesh, stay with me. I'll come back to you shortly. Let's also tell our viewers about how the Gen Z lingo has also taken over the parliament and the parliament debate, especially during the monsoon session, which just wrapped up a few days ago. Let's start with all the lingos that the ministers have used so far. BJP MP Bansuri Swaraj, the slang used, she used the slang clock it. Why? She used the slang to recognize something. She said that Prime Minister Modi has done a great initiative, and then she used the word clock it. Apart from that, Shrikant Lata Eknath Shinde, Shiv Sena MP, he used the word delulu, which means delusional, which means that you are being overly optimistic. Moving on, MIA is also a word which Shrikant used, which is missing in action. And also FOMO, which is fear of missing out. These are the slew of Gen Z lingo that Shrikant Lata Eknath Shinde used during the monsoon session. Apart from that, Dr. Jitendra Singh, the MOS, PMO, he used the word missing in action. This was to target Rahul Gandhi during the protest. During the protest in New Delhi, he also used the word FOMO, fear of missing out, and even MIA. So these are all the lingos, the Gen Z slangs that the parliamentarians have been using so far. Moving on, Vishnu Soam spoke to the new BJP IT cell chief, Deepak Maske. Take a look.
2: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
3: देखिए दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि I am replacing Amit Malvi. हमारी पार्टी में हम किसी को replace नहीं करते हैं, हमको अलग-अलग दायित्व मिलता है.
2: जी.
3: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियाँ, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
2: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे नहीं किया है, पर एक जेन जी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, but do you think you need to do much more on Instagram and other social media forums?
3: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम्स हैं सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
2: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
3: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सके.
1: In other news, India and Japan sealed a pact to strengthen their maritime security.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा।
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: आई एम इन अहमदाबाद गिफ्ट सिटी टुडे। फ्रॉम द लेंस ऑफ द रेगुलेटर, हाउ क्लोज डू यू थिंक यू आर एट दिस मोमेंट टू अचीविंग द ड्रीम ऑफ बीइंग Singapore, Hong Kong, New York, or London when it comes to being an international center of finance?
5: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
4: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
5: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication for NRIs.
4: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
6: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
4: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
6: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out, right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
4: चलिए, हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट HSBC टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दीज कुलचास।
6: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में। पहले तो कुलचे भी नहीं थे, अभी कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: caused me my true thoughts when I heard the sentence, तुम्हारी तनख्वाह हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आती है. तो लेट मी टेल एवरीबॉडी दैट कोई तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होती है, कोई भी तनख्वाह, कि सिपाही अपनी जान दे दे. दिस इज प्योरली दैट सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म फॉर द नेशन.
1: वेलकम टू इंडियाज बिगेस्ट ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट.
2: हमें ये पूरा रोड मैप क्लियर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना.
3: स्पंदन एक पोर्टेबल ECG मशीन है.
4: सिर्फ यहाँ पे थेरेपीज डिजाइन की गई है.
5: इफ यू नीड एनी मैन्युफैक्चरिंग हेल्प, डू रीच आउट एंड
6: आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ देम.
7: हर हफ्ते इंडिया के असली ग्रास रूट इनोवेटर्स दिखेंगे वंदे भारतम में. कमिंग सून ऑन NDTV.

0: सब है। और जब इस देश का पूर्व गृह मंत्री ये कहता है, जिसने सबसे पहले कहा था कि नक्सल सपोर्टर्स जो उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है वो ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसके बाद भी वो कह रहा है दिमागी नक्सल, मोदी विरोध में आप कहां तक चले जाएंगे?
1: और नक्सल
0: 1960s में शुरू हुआ तो किस कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को आधार बनाकर उन्होंने ये काम शुरू किया, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। और अभी जब नक्सलिज्म खत्म हुआ, वामपंथी आतंकवाद माओइस्ट जो टेररिज्म है वो खत्म हुआ, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को जो नागरिक थे उनको लाभ हुआ। उसके बावजूद भी अगर जरीवाला, मैं उम्मीद करता हूं कि डिबेट खत्म होते वो कहेंगी कि आई एम नॉट अ दिमागी नक्सल।
1: बट सिंस यू मेंशनड पी चिदंबरम, आई वांट टू क्विकली टेल आवर व्यूअर्स व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इज, एंड दैट रियली अंडरस्कोर्स फॉर यू द डिफरेंस ऑफ व्हेन यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी एंड व्हेन यू आर ओनली एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स। बिकॉज व्हेन मिस्टर चिदंबरम वाज द होम मिनिस्टर, व्हाट डिड ही थिंक ऑफ दीज दिमागी नक्सल्स? लेट्स टेल यू अबाउट दैट। वे बैक Today he's saying, by the way, he tweeted to say, "Main bhi dimagi naksal." But at that time, way back in 2010, he said, "Intellectual support stands in the way of tackling Maoists." That is him in 2010. Cut to 16 years later, he's saying, "I'm proud to be a dimagi naksal." ये कैसे हृदय परिवर्तन हो गया हुडा जी? खुद जब वो कह रहे थे 2010, he was literally talking about the dimagi naksals. 2026, he has branded himself a dimagi naksal. Why?
2: Right, so perhaps possibly the only minister or a leader in the BJP that questions the BJP, that questions the ruthlessness of the government, that actually puts genuine question. Not that I'm a supporter, in no way I'm a supporter of him, but he's somebody who genuinely believes in
1: Mr. Chidambaram. Mr. Chidambaram. This is P. Chidambaram.
2: Oh, okay, sorry. My
1: bad. Yes, former Home Minister.
2: My bad. I'm so sorry.
1: अरे आप क्यों उनका पत्ता कटवा रही हो? उनको BJP आपने? I got confused.
2: मैं confused किसी और से कर रही थी. My bad. Sorry about that.
1: Maybe the two of you know something that the rest of us don't. Maybe Mr. Chidambaram is the Hamza Mazari of the Congress. You never know. हाँ, बताइए भाई, P. Chidambaram, वो खुद दिमागी नक्सल को पहले गाली दे रहे थे.
2: ठीक है. So, ये वाला जो दिमागी नक्सल का कॉनोटेशन यूज बाई प्रधानमंत्री मोदी जी इज टू आइडेंटिफाई द पीपल दैट क्वेश्चन हिम, इंसल्ट देम, एंड दिस पॉलिटिकल रेटोरिक इज जस्ट टू ब्रांड पीपल।
1: अरे बट लीव एनी क्वेश्चंस ऑफ मोदी, मिस्टर चिदंबरम वाज सेइंग दैट ही डिड नॉट यूज द टर्म दिमागी नक्सल, बट ही सेड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इज द रियल प्रॉब्लम।
2: नक्सलिज्म, नक्सलिज्म इन 2010, नक्सलिज्म इन 2026, ह्यूज मैसिव डिफरेंस, राइट? प्रोबेबली नक्सलिज्म, माओइज्म, अ लॉट ऑफ दीज elements that were actually causing
1: huge
2: real threat,
1: because now
2: real
1: they had been beaten into submission. At that time they were being given a free run, they were being treated as some intellectual giants, they were attending seminars, they were attending conclaves. Today they are being told, lay down arms or we are going to kill you, period. That's the difference, Huda Zariwala.
2: Agreed.
1: And that is why people who continue to give them that oxygen, that intellectual oxygen, are also being called out. Yes, this gentleman here wants to ask a question. Go on.
0: 2010 mein jab Chidambaram ne bahut कड़ाई के साथ नक्सलिज्म से निपटने की बात कही, तो CWC में कांग्रेस के कई लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उस वक्त आर्टिकल लिखे, ओपेड लिखे, और इसीलिए जरीवाला ने जो समझा बहुत गलत नहीं समझा। 2010 में जो चिदंबरम कर रहे थे वो आज के हिसाब से बीजेपी वाले थे। इनके पास एक लॉजिक नहीं है। मुझे लगता है डिबेट खत्म होते होते ये कहेंगे कि गलती हो गई, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गई थी, इसलिए मैं विड्रॉ करती हूँ।
1: We are all trying our very best, especially Harshvardhan ji, trying to convert Huda Zariwala by the time people Sansad ends. Yes, what's your question? Go on.
3: Hi, good afternoon, everyone. My name is Talha Imroz Khan. I'm doing journalism from Jamia. First of all, I'm a very big fan of yours.
1: Thank you so much, Talha.
3: Abhijit, I want to ask you from that, don't you think that using such a cheap term from a position of prime minister is a something, there should be some decency. Don't you think that?
4: No, not at all. I think there's nothing cheap about it, because mental naxalism, what does it translate into?
3: Yeah.
4: Technically, I mean, if you want to go for a pure English translation, it would be mental Maoism. Okay.
1: You know, it's funny you say that, because a lot of people are saying Dimagi Naksal translates as intellectual Naksals.
3: Yeah.
1: Not mental. They are saying basically you're scared of us because all the Sanghis are so ill-educated, so poorly educated, that they are scared of intellectual people.
4: See, this is the thing why my friend Huda is wrong. it was wiped out by Siddhartha Shankar Ray in Bengal in the 70s using the nastiest means. They won't even allow intellectual naxalism, as it's called, to survive. Those intellectuals who hadn't even lifted arms would be taken to that infamous holding cell in... One second, let me finish.
0: Yeah, sure.
4: And

0: You accept that they are unhappy, it's not an equal society, they will resort to violence. Why will they resort to violence?
1: Okay.
0: They will resort to system being changed.
1: Just a second, I want to take more questions. Ask your
0: that
1: question.
0: I agree was a failure of the opposition. Just a second. That I agree with you.
1: Apna naam aur sawal.
2: Hello sir, my name is Lakshay Baba and I am from Uttar Pradesh. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के इतने बड़े पद से किसी वर्ड को बोला जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस शब्द को स्पष्ट नहीं कर रहे हो तो देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अगर कोई युवा कुछ युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो, तो झारखंड में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? वो स्टूडेंट हैं और जंतर मंतर का युवा दिमागी नक्सल है, बताइए।
3: नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें तो बहुत क्लैरिटी है। आपने इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी खुद? एक लाइन में उन्होंने बोला हथियारी नक्सल समाप्त हो गए, दिमागी नक्सलों से हमें लड़ना पड़ेगा। बहुत क्लैरिटी।
2: लेकिन अभी सर ने अभी बोला,
3: इसके बावजूद
2: सर ने अभी बोला कि,
3: और दूसरा
2: सर ने अभी बोला कि 1908 तक वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, 20 को वो लोग दिमागी नक्सल बने। तो इस बात पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।
3: वो अलग
0: पहले देशद्रोही था, लेकिन सोनम वांगचुक 6 महीने पहले भाजपा के प्रवक्ता आते थे, सोनम वांगचुक देशद्रोही,
2: प्रधानमंत्री
0: सोनम वांगचुक सबसे बड़े।
3: तहसीन की मुश्किल दूसरी है, आप तहसीन के ट्रैप में मत फंसिए। ये एलीट लोग हैं, एलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं। इन्होंने कहा एक मिनट तहसीन, इन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल वर्सेज जो पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं
2: सर? मैं
3: इसका मतलब ये हुआ,
2: मैं इस देश का यूथ हूं,
3: हिसाब से जो नहीं रहेगा वो पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ हो गया।
2: लेकिन
3: और यही वो खतरनाक तरीका है जिससे नक्सली कहते हैं, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन है, वो यही है, वो यही तरीका कहते हैं कि कोई हमारी बात
1: नहीं।
2: यहाँ पर स्पष्ट हो गया, सर ने 20 तारीख को ये स्पष्ट कर दिया कि वो दिमागी नक्सल थे। तो बस सर आप बताइए
0: उन 20 जुलाई को क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
0: There were violent riots.
2: अगर सर
0: No. Answer the question. Were there violent riots on the 20th of July?
4: By the Delhi police.
2: That is not violent.
0: No, that is violent. That is violent.
4: By the Delhi police.
0: There was a direct attack.
2: Violent, तो वो violent हो सकता है।
0: First of all,
2: violent नहीं था।
0: No, I'm sorry. You announced that you wanted to violate Section 144. The whole reason Section 144 was imposed. Let me finish. Section 144 was imposed in Delhi when Parliament is in session because of the 2001 Parliament attacks. They announced they were going to violate it. They gathered in numbers. They marched towards Parliament. It was violent. At that point, the moment you cross the threshold into violence, you become a Naxal. Full stop.
2: अगर आप इस देश के युवाओं की बात पहले ही मान लेते तो ये सब
0: देखने नहीं पड़ता। I haven't finished. The Jharkhand students, did they resort to violence?
5: No.
0: No.
5: Never.
0: Then how are they?
4: Okay, I'd like to comment.
0: So पहले आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर लीजिए ना, आपके खुद के principles का
1: सवाल। उड़ा सरीवाला, then this young man.
4: Okay, right to protest, right to dissent. The students were doing their protest constitutionally. कुछ नहीं हुआ था. It was all the violence by the Delhi police, sanctioned by Amit Shah, which is why the entire Delhi police. Allow me to speak. You know, I mean, we saw how those panned out. I mean, girls, women, उनके ऊपर you know, private parts में लाठियां चलाई गई हैं, किलो वाली लाठियां चलाई गई। What are we even talking about? That violence, I was there. I saw it happen right in front of me. Tear gas, आंसू गैस के गोले and all of that. Come on. I mean, no police, no government has the right to sanction all of that violence against the students. So now if you're going to talk about dimagi naksals, Prime Minister, ya to bata de ki wo kiski taraf mukhatib hai, kiski taraf wo dimagi naksal ka ishara kar rahe hai, ya phir hum apne aap ko dimagi naksal kahenge, to aapko koi masle masail nahi hona chahiye.
1: Chaliye, bahut jaldi apna sawal puchiye.
6: Ma'am, aapko nahi lagta ki jaise aapne bataya hai ki Delhi police ne jo bhi violent
4: riot ki thi,
6: jo bhi kiya tha, agar aapko pata ho to CJP ka jo leader hai Abhijit Dibkei, usi ki एक लाइव वीडियो थी जिसमें वो दिखा रहा था कि जो प्रोटेस्ट थे असल में 8 से 10 बच्चे, वी डोंट नो वेदर दे वर स्टूडेंट्स और एंटी नेशनल, आई बिलीव कि वे एंटी नेशनल्स थे और एंटी नेशनल्स को मौका ही चाहिए होता है ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आने का। उन्होंने एक पुलिसमैन को पहले घेरा और उसके बाद वॉयलेशंस हुए, और वैसे भी जो भी जंतर मंतर है उधर अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट कि तुम्हें प्रोटेस्ट करने तुम वहाँ करो, बट अगर जब वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएगा तो उसको हमें पहले से ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा लास्ट ईयर नेपाल में
4: उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस को भेजी थी, सारी सिक्योरिटी निकाल दी गई थी, दिल्ली सिविल ड्रेस में पुलिस के नाम पे गुंडागर्दी हो रही
1: थी।
6: लास्ट ईयर हम सबने देखा नेपाल में क्या हुआ, जेंजी प्रोटेस्ट, अगर उसके वजह से नेपाल की पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी, हमें भी पता है कि इंडिया जैसे एक इतने ज़्यादा डाइवर्स नेशन को हम इतनी ईजिली अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा। और जब गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक ऐसी जगह बना रखा है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो तो आप

0: क्यों पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हो?
1: ओके, तो जो लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन है। ओके, मोर पीपल,
2: जिस परपर्पस से दिल्ली पुलिस ने मारा बच्चों को,
3: कोई परपर्पस नहीं था, इट वाज लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, नो परपर्पस,
2: वेरी गुड। नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल, बट बांग्लादेश पुलिस को जब शेख हसीना ने कहा था स्टूडेंट्स पे लाठी मारे, डंडा मारे, पुलिस बैक्ड आउट, आर्मी बैक्ड आउट, क्या हम अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे? आई एम इन नो वे सपोर्टिंग बांग्लादेश,
1: नोबडी बैक्ड आउट, दे ओवरथ्रू द गवर्नमेंट ऑफ
2: दिल्ली। हमारी महान दिल्ली पुलिस बच्चों को मार रहे थे,
3: लिटरली दे वर वायलेंट क्रिमिनल्स, दे वर 3000 मर्डरर्स इन देयर, लेट अस नॉट फॉरगेट,
1: जस्ट फॉर क्लैरिटी लेट मी

0: नाम प्रदीप कुमार है, सेकेंड ईयर मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मेरा आपसे ये सवाल है कि उधर नक्सलवाद दिमागी नक्सली नहीं कहा गया था, कोचिंग माफियाज पे भी सवाल करा गया था, और वहाँ पे जो सुनने वाले थे वहाँ पे बस और लोग भी नहीं, स्टूडेंट एनसीसी यूनिट और एनएसएस यूनिट बैठी थी, उसमें से मैं भी एक था जो सुनने आया था कि मोदी जी एजुकेशन पे क्या कहेंगे, जो नीट पे ये बवाल हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सुनने आए थे, ना कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने आए थे। उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करने का कोई हक ही नहीं है, हक की बात नहीं है
1: उन्हें। तो अगर कह रहे हैं दिमागी नक्सल पॉलिटिकल एजेंडा है,
0: तो पॉलिटिकल एजेंडा है वो, उन्हें ये सब अगर टारगेट करना था तो पॉलिटिकल रैली में करते, ना कि लाल किला से,
1: क्योंकि अभिजीत
0: स्टूडेंट सुनने आए थे।
1: अभिजीत आंसर दिस, दिस सीम्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल एजेंडा सेज दिस यंग मैन देन समथिंग दैट शुड हैव बीन सेड ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट्स व्हाट तहसीन आल्सो सेड। यस,
2: ज़ूम इन ऑन दिस, दिस इज political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She said this in, sorry, political rally in Kolkata, Indira Gandhi saying foreign hand. She went on, this is during peak emergency.
1: No, but he is saying went ki aap on political rally mein kahiye, red fort se mat kahiye, independence day ki
2: speech mein mat kahiye. Independence day is a political rally, boss. It has always been a political rally.
3: Why are you not saying comparison? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है, तो तब तो फिर रेड फोर्ट से पॉलिटिकल जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है इंडिपेंडेंस डे पे? नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है?
0: पहले आप सुनिए, पहले जो एनसीसी यूनिट एनएसए यूनिट आई थी वो कॉलेज के थे,
3: आप वो भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं ना, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं। देश के 180 जिले पूरी तरह से माओइस्ट टेररिज्म से इफेक्टेड थे, और आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिकल इशू है? जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने देता, जो अस्पताल नहीं जाने देता, जो आपको मोबाइल टावर नहीं लाने देना, जो आपको टीवी नहीं देखने देता, जो आपको सड़क नहीं लाने देता, वो आपको पॉलिटिकल लग रहा है? और अगर ये पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिकल हर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, हर प्राइम मिनिस्टर।
1: यू नो, एंड आई आल्सो, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वांट टू गिव इट सम कॉन्टेक्स्ट। वन लेडी फ्रॉम कांकेर एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस एंटायर डिबेट रेजिंग अराउंड दिमागी नक्सल, एंड शी इज समबडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड। हर हस्बैंड वाज किल्ड बाय माओइस्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक ऑफन अबाउट। दीज आर पीपल हु ब्लू अप रोड्स in Chhattisgarh, in Jharkhand, what used to be known as the Red Corridor. They used to pick up men, brand them informers and slaughter them. After a so-called Jan Adalat, they used to pick up little girls and sexually exploit them, massacre them, leave them pregnant many, very often. Let's listen to this lady from Kanker about what this...
4: हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदंबरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के दिमागी नक्सली दिमागी में समर्थन दे रहे हैं, इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग। हम लोग अपने पति को हैं बस्तर में, तो ऐसे कई बहने हैं जो अपने पति को हैं।
1: So there are women there who have lost their husbands in Bastar, in Kanker.
5: Nobody from here, nobody from here, I'm taking the liberty to speak for them, wants violence or wants people to be killed. What are they asking for? Let's be clear and let's not mix up the two issues. What happened with this woman is terrible. Nexalism, violence is bad. At this moment, left-wing extremism, which is Nexalism, is happening in Manipur, where there are Jan Adalats, where people are being killed. At this moment, right now, between two communities, and the situation's quite messed up. And right now, Padmaja, you had interviewed, you've still not got the Nagaland Accord, which, by the way, is also left-wing extremism. Let's come to what they are asking for. What these people are asking for, what he went in hope for, was that the Honorable Prime Minister, after Dharmendra Pradhan went, said that there will be certain amount of solutions that will be given. None of those solutions are specific and they are left wanting for more. For example, I'll be very brief. This idea that if there's a paper leak, you'll suddenly have special courts and in 3 months people will be sentenced. Now, all of you all must ask, and I send this to all the opposition people, the opposition also in our country is so dumb that they didn't ask this question in Parliament, they didn't allow Parliament to function. You know, there in special courts, there are 3 lakh cases pending. Ask the government, where are you getting the judges from? Where are you getting the judges? Are they special judges? Or the judges who rape ka case, they asset ka unko wahan bithaoge? So both are fooling you, the government and the opposition. And that's where these people are left wanting. Now, when they're left wanting and they are asking for their rights, one calls them Gen Z, aap aage lado, dusra kehta hai aap dimagi naksal ho. Bhai, inko unka hak chahiye, aur kuch nahi chahiye. Stop calling them names, just give them what is right to them, their dignity.
1: Counter to that, Tehsin, you are right in saying that people went there looking for solutions. But आपको याद होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ लोगों को AI skilling की भी बात की थी. He also said that we are going to

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मैम आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का अगर संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता, हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए हम आपके बच्चे नहीं हैं।
1: झारखंड्स जेन जी आस्क्ड फॉर देयर राइट्स, झारखंड्स जेन जी डिडंट गिव अप।
2: ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये लाठी चार्ज हो रहा है, रांची पुलिस की टीम जो है इस पूरे इलाके को खाली करा रही है।
1: एंड नीदर डिड वी,
3: वहाँ पर मजदूर के बच्चे बैठे हैं, गरीब के बच्चे बैठे हैं।
4: आप एक बार आपको तो बात करते हैं इस टाइम
0: पे। रांची में कितना दूर है सर?
1: The battle in Jharkhand is won, but their war continues.
5: It is time for them to be heard. Young people, those who have been demanding a better future.
1: NDTV stands with the students. Because when it really matters, the buck stops here.

0: salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
1: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ. इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीज़ें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा. उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया. वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए. हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की. उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई. मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए, हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं. आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आप लोगों को, हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज़ को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर. मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रही.
0: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है. ये आपके शब्द हैं. हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम. लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है. उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस. और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं. तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है. मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए. वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है.
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ. क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था. क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा भी फ़ोन ओपन है. बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है. अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया. मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है. वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था. अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुँची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुँचे. क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीज़ें करूँगी. मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ. मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगती हूँ. कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफ़ी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार. कृपा करके इस चीज़ को बंद किया जाए
0: मैडम. बिल्कुल. और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है. तो
1: जी हाँ.
0: जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफ़ी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम. मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है. आप भी एक सिटीज़न है मैडम. आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है. इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था. क्योंकि और मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
1: जी सर,
0: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम किसको नहीं होता है वीआईपी मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
1: तो जी हाँ।
0: और लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ये तीन शब्द जो आपने बोला वी आर जेन जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए वी आर जेन जी? ये माहौल जो चल रहा है जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
1: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई। तो मैं अब क्या बोली इस चीज को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर।
0: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
1: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ, मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूँ, इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
0: क्या आप जेन जी जो जनरेशन है मैडम उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेन जी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन जी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेन जी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
1: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेन जी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था, वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेन जी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेन जी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेन जी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से, इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
0: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम, ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है,

0: मैं आपको बोलना
1: सर
0: चाहता हूँ
1: मेरे
0: कि
1: साथ
0: अगर
1: पहली
0: आप
1: बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। अब इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के, या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
0: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है,
1: जी सर,
0: आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2-3 दिन बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्लैरिफाई किया है, अपनी आपने अपने आपके शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के
1: जी
0: मेमोरी
1: सर,
0: में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
1: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और J&K के आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में,
1: जी सर,
0: ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए ही तो
1: पब्लिक
0: काम
1: के
0: कर रही
1: लिए
0: है
1: सर, हमारे
0: ना।
1: लिए,
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम
1: जी
0: सब
1: सर, हाँ
0: इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर, वो सब लोग उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, उनको व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए वो मुझे यूज़ कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफ़ी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज़ करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect,

0: Sometimes it takes the innocence of a child to hold up the ugliest mirror to our society. A video of this young girl, Tinkle, from Arunachal Pradesh has gone amazingly viral for having to do something no four-year-old child in this country should ever have to do, defend her Indianness. Look at what she said. Hum log Indian hai, aap humko Chinese bolne se hum bahut gussa hote hain. She shouldn't have to explain her identity. She shouldn't have to tell you she's Indian. If anyone needs a lesson in who belongs to this country, it's not this little girl, Tinkle. It's the ignorance that questioned her in the first place.
1: Hello, guys. Humko ek amina, hum kaise bole? Ek sir, aap Chinese se kaise bole? Mera ab India hai, hum bhi India hai. Aap log kaise mat bolo? Hum log India hai. आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको इससे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया हमको चाइनीज मत बोलो, हम बहुत दुखी लगते चाइनीज बोलने से। हम इंडिया का है, हम इटानगर में रहते हैं, तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज। बाय बाय।
0: An adorable little Tinkle and her mother Ayum joined me from Itanagar, Arunachal Pradesh, just a short while ago. A four-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle, or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. टिंकल का वीडियो इतना वायरल हो गया है, तो मेरा पहला सवाल टिंकल से ही है। टिंकल, आपने देखा आपका वीडियो इतना वायरल हो गया है इंडिया में, आपने देखा वो? उस वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं टिंकल?
2: क्या बोला था, बोल दो। क्या मैं क्या बोला था?
1: भैया एक भैया को चाइनीज बोले।
0: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं, कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
1: एक भैया।
0: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
1: हम इंडिया है।
0: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में

0: क्यों था ये?
1: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था। तो सिंगर का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में ट्विंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो ये ट्विंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो ट्विंकल को दुखी हो गया, तो ट्विंकल ने वीडियो बना लिया।
0: ट्विंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
1: आपको आदमी शैलीश बोले तो बच्चा लग रहा, बुरा लग रहा, बुरा ना
0: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और ट्विंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं।
1: देखो प्यार
0: इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप ट्विंकल।
1: हाँ।
0: और ट्विंकल, आपके पापा पुलिस में है ना?
2: मेरा अब बनते हैं।
0: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ ट्विंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे।
1: करा
0: यस, स्टैंडिंग।
1: करके
2: जाना मन जाना।

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू,
2: बाय बाय।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.

0: Our top focus on NDTV right now. Now for a very disturbing story that we're starting from, and this is from Vishakhapatnam. It's the death of a six-year-old UKG student. His name, Pranay. It has shocked India. The toddler's family alleges that he was beaten by his teacher for not completing his homework. The family says the boy was healthy when he left home and that he later collapsed inside the classroom after allegedly being hit with a stick. They claim CCTV footage from the school shows the teacher hitting and frightening the child before he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, आपको अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पर कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर
2: कोई
1: नहीं हिलेगा। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
3: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी, उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है, वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूव

0: इंसिडेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर नहीं रहा।
1: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
0: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है, अगर VIP मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज, तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम

0: डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार, जितने आस पड़ोस, सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं। मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं, जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं, कोई नहीं। मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक एक दो दिन की बात है ये। लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो
0: सर,
1: आपने आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions pardon me, in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्ज़ाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए। तो इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर, इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम उनको पूछता हूँ कि मेरा या ठिकाने जाए चाहे, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में जब हम बोलतो आहे मीटर लावू का, हा मीटर चालू के लिए आहे, रिक्षा स्टँड कुठे आहे, तर जवळ आहे, समोर आहे। तर असे दोन, ये जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस आहे उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सैटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: In other news, US ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region, and indicated the US may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir. That's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the US ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
6: देखो, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है।
7: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but it has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of

0: President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
1: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
2: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था. आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है. इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है. कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है.
3: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस. अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है.
4: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक. इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं. इनके खिलाफ

0: करेंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये है असली देश के दुश्मन, हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
0: अपनी परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है, इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
0: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे, इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया। अब
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कम राइट बैक, लॉट्स मोर लाइंड अप।
3: Ahmedabad's gift city today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York or London when it comes to being an international center of finance?
4: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
3: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
4: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication for NRIs.
3: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
5: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
3: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
5: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out, right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
3: चलिए, हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट HSBC टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दीज कुलचास।
1: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में, पहले तो कुलचे भी नहीं थे, अभी कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।
6: अ वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चंस, आइडियाज दैट चैलेंज द ऑर्डिनरी, कन्वर्सेशंस दैट कनेक्ट कंट्रीज एंड कल्चर्स, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.

0: Welcome back and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya
2: main kya bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोले।
1: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं, कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडियन है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं
1: है। नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना? तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: जन गण

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: उस वीडियो में जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो 1 month पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती।
1: जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
0: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जेएंडके की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ, कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए,
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ। जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है, तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं। मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions, pardon me, in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए। इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर, इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम मैं उनको पूछता हूँ कि मेरा या ठिकाने जाए चाहे, तो उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में माझा जेव्हा बोलतो आहे, मीटर लावू का, हा मीटर चालू केले आहे, रिक्षा स्टँड कुठे आहे, तर जवळ आहे, समोर आहे, तर असे दोन हे जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस आहे उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: In other news, US ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the US may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir, that's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the US ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
6: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा

0: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but there has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
1: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
2: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था. आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है. इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है. कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश

0: तरीके से आगे बढ़ा रही हैं।
1: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: नई परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
3: Slipping into a very short break, I'm right back. Lots more lined up.
4: I'm in Ahmedabad's Gift City today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York, or London when it comes to being an international center of finance?
5: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
4: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
5: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication for NRIs.
4: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with Gift City till this moment in time?
6: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
4: Which are the instruments that you think that have now come up around Gift City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
6: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out? Right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
4: चलिए, हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट HSBC टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दीज कुलचास।
6: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में। पहले तो कुलचे भी नहीं थे, अभी कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।
7: अ वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चंस, आइडियाज दैट चैलेंज द ऑर्डिनरी, कन्वर्सेशंस दैट कनेक्ट कंट्रीज एंड कल्चर्स, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect,

0: Welcome back and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hai, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
1: कौन बोल रहे आपको चाइनीज? आप तो इंडियन है, कौन बोल रहे आपको चाइनीज?
3: भैया
1: नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन. आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया.
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो. और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं. इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल. और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना? तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए. एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे. यस, स्टैंडिंग.
2: Yeah, not a man. Yeah, not.

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: a young woman confronting security personnel in Ladakh, screaming, "We are Gen Z," as if it gave her the license to expect entitled privilege. We questioned the tone, the confrontation, and the optics of taking on men in uniform who are stationed in one of the most unforgiving terrains on earth to keep this country safe. Many agreed with us, many pushed back. Today, that same young woman is on our show. She spoke only to me, giving her version of what really unfolded on the ground. Television news cannot simply be about picking a side, delivering a lecture, and shutting the door on the other perspective. And on NDTV, we always return to the story when it really matters. Our security forces deserve unyielding respect that is non-negotiable. But citizens, especially young people in sensitive regions, have voices, frustrations, and context that raw social media videos often leave out. We didn't soften our questions today. She didn't hold back her answers. Here she is, live with me.
1: We are not tolerating this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो
2: चलो
1: कैसे रुकेंगे? पांच घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो।
3: वो कश्मीर एयरपोर्ट नहीं उतरे हो?
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, आप अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर।
0: And speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी, उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है, वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रही।
0: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई

0: माय सैलरीज पे योर टैक्सेस और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
0: मैडम बिल्कुल, और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है, तो
1: जी हाँ।
0: जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक सिटीजन है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था। क्योंकि और मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
1: जी सर,
0: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको yes. नहीं होता है, VIP मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
1: तो जी हाँ।
0: और, लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ये 3 शब्द जो आपने बोला, VR Gen Z, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज किए, VR Gen Z, ये माहौल जो चल रहा है जेंजी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
1: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई, तो मैं अब क्या बोली इस चीज को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर।
0: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग yes, बोल रहे हैं आपके खिलाफ yes. मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
1: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है, कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ। मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है।

0: क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूं। इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ, जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
1: क्या आप जेंजी जो जनरेशन है मैडम, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेंजी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेंजी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेंजी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसके इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
0: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेंजी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था। वो फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेंजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेंजी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेंजी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं बोलना जरूरी है वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
1: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज़ रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए, ये सब होता रहता है मैडम। ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना
0: सर,
1: चाहता हूं
0: मेरे साथ अगर पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
1: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
0: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और जेएनके की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए। और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम? देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए।
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद? उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है। मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है। सारे रिश्तेदार, जितने आस पड़ोस, सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं, जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं, कोई नहीं। मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ, और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू सर। थैंक यू।

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो 1 मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल
1: मैडम
0: मीडिया पे नहीं रहती।
1: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
0: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है, अगर वीआईपी मूवमेंट था हमें नहीं पता था, प्रेस स्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जेएंडके की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए ही तो
0: पब्लिक
1: काम
0: के
1: कर
0: लिए सर, हमारे लिए।
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे

0: ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे? तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है। मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है, तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली? मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो
0: सर,
1: आपने आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying, pardon me, in Marathi to assess the language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्ज़ाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए। तो इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर, इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम उनको पूछता हूँ कि मेला या ठिकाने जाए चाहे, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में जब हम बोलतो आहे मीटर लावू का, हा मीटर चालू के लिए आहे, रिक्षा स्टँड कुठे आहे, तर जवळ आहे, समोर आहे। तर असे दोन, हे जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस आहे उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: US ambassador to India Sergio Gaur is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gaur described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the US may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gaur's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and Marsh over Gaur's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir, that's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the US ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting. And we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. And we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: You know that that's very good that he's saying it. This is something we've been insisting for a long time.
6: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
7: देखो, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा

0: है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है।
1: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but there has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
2: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
3: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की

0: नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
1: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है।
2: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
1: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
2: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
3: Slipping into a very short break, come right back, lots more lined up.

0: कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
1: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था। तो ट्विंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो, जो तो वो आइसक्रीम वीडियो में ट्विंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो ट्विंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो ट्विंकल को दुखी हो गया, तो ट्विंकल ने वीडियो बना लिया।
0: ट्विंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
1: आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा, बुरा ना है।
0: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और ट्विंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं।
1: देखो देखो प्यार
0: इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप ट्विंकल।
1: हाँ।
0: और ट्विंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
2: मेरा अब वकील बनते हैं।
0: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ ट्विंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे।
1: जनगण
0: यस, स्टैंडिंग।
1: मन
2: जन गण मन।

0: ने बच्चों के अस्पताल उड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं जहां स्कूल है वहां क्या प्रॉब्लम है, उनको तो स्कूल ही मिलना बंद हो गया, तो हमें क्या करना होगा?
1: द यूथ इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। अगर हम ही इलेक्शन में बैठ गए तो आप लोगों की क्या जरूरत रहेगी फिर?
0: बिल्कुल यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं?
2: मतलब आप वोट देके पार्टिसिपेट
0: करें? आपको वोट देके भी पार्टिसिपेट करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी आना। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बंदूक की नली से क्रांति नहीं निकलेगी। जिसके दिमाग से बंदूक की नली से क्रांति निकल रही वो दिमागी नक्सल।
2: हर्षवर्धन जी, ये दिमागी नक्सल आप बंदूक की नली से नहीं बनते ना, आप अपने मोबाइल फोन से भी बन सकते हैं। और जितना ज्यादा उनका गुस्सा, द मोर डिसअपॉइंटमेंट, द मोर डिसअफेक्शन क्रीप्स इन, वोंट यू देन बी ब्रीडिंग दिमागी नक्सल्स और पीपल हु देन क्वालिफाई।
0: हर डेकेड के बाद जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी उसको सोचना पड़ेगा कम्युनिकेशन का तरीका, इंप्लीमेंटेशन का तरीका, एग्जीक्यूशन का तरीका। इस सरकार के लिए हाई टाइम, इस सरकार के
3: जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि स्कूल उड़ा रही नक्सलों में, 90,000 स्कूल बंद हो गए सरकार के नीचे, 90,000 स्कूल, वो नक्सलवाद नहीं है। और जिस स्कूल में आप जाओगे, I have a 3.5-year-old son. At 3.5, he's learning AI. Abhijit and I spoke about this. At 3.5, गरीब का बच्चा नहीं सीख रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेरा बच्चा इसलिए आगे जाएगा क्योंकि वो मेरा बच्चा है। ये अनफेयर है, हम इसलिए आज़ाद नहीं हुए। 15 अगस्त को हमें आज़ादी क्यों मिली? हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि कोई बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज ही बना रहे थे। हमें आज़ादी मिली कि हम सब इक्वल मुल्क के इक्वल हिस्सेदार बने। इस संविधान के पहले चार शब्द हैं, पहले चार शब्द नहीं है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का विपक्ष का नेता, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग सम्मानित होना चाहिए। किसी को कॉकरोच कह दो, किसी को नक्सली कह दो, प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कह दो, बंद करो ये सब छिछोरापना, बंद करो। हम सबको एक होना होगा और हमारी इज्जत ही सबसे जरूरी है। हम इज्जत के लिए
0: तहसीन भाई बड़ी अच्छी बातें करते हैं। पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मौत का सौदागर हो या कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, जो पप्पू कहा जाता है या कुछ भी कहा जाता है गलत। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है, दिमागी नक्सल जब आप कह रहे हैं, अभी आपने नक्सलिज्म को खत्म किया है, अगर दिमागी नक्सल रहेंगे तो कल को फिर से नक्सलिज्म होगा और वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा सफल करेगा।
4: See this, I don't agree with this so-called labels, okay? It is scientifically, इसको हम categorization बोलते हैं। The ancient Greeks, there are 5 kinds of love. Agape, Storge, Philos, Eros, and one more, I forget what the fifth one is, okay? Even in Sanskrit, you have this kind of categorization. There is the love you feel for a brother, there is a love you feel for a wife, there is a love you feel for another man's wife, etc., etc. So this kind of, let me finish that. This categorization is a very normal thing, so I reject this whole notion. I think labeling is a very good thing. It should be done because it encapsulates something. But to answer your question, you forget Naxals, bro. When I was in my teens and 20s, I was a hardcore Leninist, Stalinist, Pol Potist. I wanted to take all rich people, put them out in the fields and do forced labor. Do you know when I lived in the USSR as a kid, how often I used to go to KGB headquarters in the hope that they would recruit me to fight against global capitalism? No, dead serious. I used to do that. So what you have to do with this is, first, you know, my parents never tried to wean me off of it. They're like, bachcha hai, aram se samajh jayega. But the point is, at home, there was always a very vibrant culture of debate. The thing is, you always have to debate these ideas. And that is when the kids grow up and away from it. The problem here is, I don't see any intellectual pushback from the right. They are not able to define what dimagi naxalism is clearly. They're able to give labels, very effective labels, but they're not able to define, they're not able to categorize, and they're not able to
2: counter. And which is where I want to make a distinction between what you said, Tehsin, and what seems to be suggested by this term dimagi naxal. You spoke of, you know, schools are being shut down. Sure, that is one side of the debate. And the other is when you're talking of people who are encouraging armed insurgency. plenty of us have also, you know, in the good old college days, heard these romantic notions of liberated zones, overthrow the state. We had that entire movement to defund the police in the United States. That is a dangerous idea. You have a dangerous idea, and I don't mean to drag in that girl again, but what we saw very recently happening in Leh, where a girl is saying, I don't want to be stopped by the army because I am Gen Z. Now, that is a very dangerous idea.

0: idea when you think you are above the idea of law and state, and perhaps that, if I am not mistaken, loosely is the definition of Dimaghi Naksal.
1: But just to add one thing, you also have to understand at your age, these ideas, they're very, seductive, because they offer a very clear if-then answer. Har cheez ka seedha. Agar ye hota hai, and they call it scientific principles. Human beings are not scientific. You know, economics, how many of you are economic students? You know that the basic rules of all economic theory is ceteris paribus and man is rational. Right. Man is the most irrational creature. Hmm. Right, that is why economic theory never works.
2: No.
0: Okay.
2: I don't agree that man is not rational because the progress of humanity as compared to other species has happened on the evolution of rationalism. We've all been very rational to the extent, and this is something you've said, Abhijit, we are in one of the most non-violent phases of human history because of rationality, though it may seem that way. And that's not the debate right now. The issue out here is, what is a Dimaghi Naksal? That's the broad definition. A Dimaghi Naksal versus somebody who doesn't have a dimag. Please understand the difference. There's a paper leak. The whole protest started with a paper leak. The solution of the Education Minister of India, his brilliant solution was to shut Telegram, because jo paper leak karte wo WhatsApp se paper nahi bhej sakte, wo Telegram se bhejenge.
0: No, I think that is an unfair comparison.
2: Why? I'll tell you why. There's a pushback from there. Please allow me. I'll tell you why there's a pushback. There's a pushback because nobody out here believes in communism or socialism. None of them. The pushback is, it's not an equal society for them. They don't have the same opportunities that Netas, kids, and
0: but
2: other
0: Tehsin,
2: people.
0: That
2: allow
0: doesn't
2: me.
0: Have anything
2: that
0: to that do has, with the Naxalism.
2: Who have created that has
0: the solution to
2: you
0: inequality.
2: To, you
0: now you are again harking back to a very dangerous idea that in an unequal society you have to resort to violence.
2: Who's saying resort
0: that
2: to
0: Naxalism
2: violence?
0: Is the only on. Answer to again, an unequal society?
2: Again. There is the why do you all assume, or why does the government assume that dissatisfaction will lead to violence? This fact, this
0: because that is what Naxalism advocates for.
2: It's a term the Prime Minister used without any.
0: Arif, that is a very lived reality of our country. It's
2: and
0: not
2: that
0: a
2: lived
0: term
2: reality,
0: that the Prime Minister
2: okay,
0: invented.
2: Allow me to.
0: Naxalism existed in our country
2: that's
0: until
2: true.
0: This year, March.
2: Correct. And until this year, now in August 2026, as of today, left-wing extremism is on the right, is on the rise in the Northeast, particularly in Manipur. That is not the point. I completely agree with you. That is an please allow me to.
0: That is not left-wing,
2: allow me
0: but
2: to finish. Just allow me to finish. That is a failure of the government. The question is, when you brand your failure, their failure, to their aspirations, and then put motives on their aspirations that because they're unhappy, you accept that they're unhappy, it's not an equal society, they will resort to violence. Why will they resort to violence?
0: Okay,
2: they will resort to system being changed.
0: Just a second. I want to take more questions. Ask your question.
2: That I agree was a failure of the opposition.
0: Just a second.
2: That I agree with you.
0: Apna naam aur sawal.
3: Hello, sir. My name is Lakshay Baba and I am from Uttar Pradesh. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के इतने बड़े पद से किसी वर्ड को बोला जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस शब्द को स्पष्ट नहीं कर रहे हो तो देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए अगर कोई युवा कुछ युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो, तो झारखंड में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? वो स्टूडेंट हैं और जंतर मंतर का युवा दिमागी नक्सल है, बताइए.
4: नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें तो बहुत क्लैरिटी है. आपने इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी खुद?
3: जी.
4: एक लाइन में उन्होंने बोला, हथियारी नक्सल समाप्त हो गए, दिमागी नक्सलों से हमें लड़ना पड़ेगा. बहुत क्लैरिटी.
3: लेकिन अभी सर ने अभी बोला,
4: इसके बावजूद
3: सर ने अभी बोला कि,
4: और दूसरा
3: सर ने अभी बोला कि 1908 तक वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, 20 को वो लोग दिमागी नक्सल बने. तो इस बात पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ.
4: वो अलग
2: इशू है. 6 महीने पहले देशद्रोही था. लेकिन सोनम वांगचुक 6 महीने पहले भाजपा के प्रवक्ता आते थे, सोनम वांगचुक देशद्रोही. 6 महीने पहले सोनम वांगचुक सबसे बड़े.
4: तहसीन की मुश्किल दूसरी है. आप तहसीन के ट्रैप में मत फंसिए. ये एलीट लोग हैं, एलिटिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं. इन्होंने कहा एक मिनट तहसीन, इन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल वर्सेज जो पढ़े लिखे नहीं है. इसका मतलब आप समझ रहे हैं
3: सर? मैं
4: इसका मतलब ये हुआ,
3: इस देश का
4: यूथ के हिसाब से जो नहीं रहेगा वो पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ हो गया.
3: लेकिन
4: और यही वो खतरनाक तरीका है जिससे नक्सली कहते हैं, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन है, वो यही है. वो यही
2: क्वेश्चन, वेर देयर वायलेंट राइट्स ऑन द 20th ऑफ जुलाई?
5: by the Delhi police.
6: That is not violent.
1: No, that is violent. That is violent.
5: By the Delhi police.
1: There was a direct attack.
6: Violent, so violent no, no, no.
1: First of all, no, I'm sorry. You announced that you wanted to violate Section 144. The whole reason Section 144 was imposed... Let me finish. Section 144 was imposed in Delhi when Parliament is in session because of the 2001 Parliament attacks. They announced they were going to violate it. They gathered in numbers. They marched towards Parliament. It was violent. At that point, the moment you cross the threshold into violence, you become a Nazi. Full stop.
6: Agar aap is desh ke yuvaon ki baat pehle hi maan lete, to ye sab dekhne nahi padta.
1: I haven't finished. The Jharkhand students, did they resort to violence?
7: No.
1: Never. Then how are they?
5: Okay, I'd like to comment.
1: So, पहले आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर लीजिए ना आपके खुद के principles का
0: सवाल उल्टा सरीवाला then this young
5: okay,
0: man.
5: Right
0: yes.
5: to protest, right to dissent. The students were doing their protest constitutionally. कुछ नहीं हुआ था. It was all the violence by the Delhi police, sanctioned by Amit Shah, which is why the entire Delhi police. Allow me to speak. You know, I mean, we saw how those panned out. I mean, girls, women, उनके ऊपर you know private parts में लाठियां चलाई गई हैं, किलो वाली लाठियां चलाई गई. What are we even talking about? That violence, I was there. I saw it happen right in front of me. Tear gas, आंसू गैस के गोले and all of that. Come on. I mean, no police, no government has the right to sanction all of that violence against the students. So now, if you're going to talk about Dimagi Naxals, Prime Minister, ya to bata de ki wo kiski taraf mukhatib hai, kiski taraf wo Dimagi Naxal ka ishara kar rahe hain, ya phir hum apne aap ko Dimagi Naxal kahenge, to aapko koi masle masail nahi hona chahiye.
0: Chaliye, bahut jaldi apna sawal poochiye.
8: Ma'am, aapko nahi lagta ki jaise aapne bataya ki Delhi police ne jo bhi violent
5: right,
8: jo bhi kiya tha, agar aapko pata ho to CJP ka jo leader hai, Abhijit Dibkei, usi ki एक लाइव वीडियो थी जिसमें वो दिखा रहा था कि जो प्रोटेस्ट थे असल में 8 से 10 बच्चे वी डोंट नो वेदर दे वर स्टूडेंट्स और एंटी नेशनल आई बिलीव कि वे एंटी नेशनल्स थे और एंटी नेशनल्स को मौका ही चाहिए होता है ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आने का उन्होंने एक पुलिसमैन को पहले घेरा और उसके बाद वॉयलेशंस हुए और वैसे भी जो भी जंतर मंतर है उधर अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट कि तुम्हें प्रोटेस्ट करने तुम भाग करो बट अगर जब वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएगा तो उसको हमें पहले से ही बचाना पड़ेगा क्योंकि हमने रिसेंटली देखा लास्ट ईयर नेपाल में
5: उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस को भेजी थी सारी सिक्योरिटी निकाल दी गई थी दिल्ली सिविल ड्रेस में पुलिस के नाम पे गुंडागर्दी हो रही
0: थी
8: लास्ट ईयर हम सबने देखा नेपाल में क्या हुआ जेंजी प्रोटेस्ट अगर उसके वजह से नेपाल की पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो होगी हमें भी पता है कि इंडिया जैसे एक इतने ज़्यादा डाइवर्स नेशन को हम इतनी ईजिली अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा और जब गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक ऐसी जगह बना रखा है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो तो आप उसे क्यों पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हो
0: तो जो लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन है ओके मोर पीपल
5: जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने मारा बच्चों को
1: कोई बर्बरता नहीं था इट वाज लॉ एंड ऑर्डर नो बर्बरता वेरी गुड
5: नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल बट बांग्लादेश पुलिस को जब शेख हसीना ने कहा था स्टूडेंट्स पे लाठी डंडा मारे पुलिस बैक्ड आउट आर्मी बैक्ड आउट क्या हम अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे आई एम इन नो वे सपोर्टिंग बांग्लादेश
0: नोबडी बैक्ड आउट दे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट
5: आवर दिल्ली पुलिस हमारी महान दिल्ली पुलिस बच्चों को मार रहे थे लिटरली
1: दे वर वायलेंट क्रिमिनल्स दे वर 3000 मर्डरर्स इन देयर नॉट कॉपीट
0: जस्ट फॉर क्लैरिटी लेट मी रिमाइंड एवरीवन वाचिंग राइट नाउ हुडा जी यू आर सेइंग दैट बांग्लादेश पुलिस बैक्ड ऑफ In fact, the people who may just fit the definition of Dimagi Naxal or Naxal marched into her
5: just
0: house.
5: Just the police action the comparison. Yeah, just
0: they,
5: the police.
0: They Delhi carried police out the rampage. But anyway, there was
5: Bangladesh
0: no control.
5: Police, unhone bachcho pe laathi
0: nahi maari. Okay, I think there's a student here who wants to speak. Yes.
5: And in no way I support Bangladesh whatsoever.
0: Okay,
5: for
0: go
5: the record.
0: On. Ask your question.
9: Hello sir, hello madam. मेरा नाम प्रदीप कुमार है सेकेंड ईयर मोतीलाल नेहरू कॉलेज मेरा आपसे ये सवाल है कि उधर नक्सलवाद दिमागी नक्सली नहीं कहा गया था कोचिंग माफियाज पे भी सवाल करा गया था और वहाँ पे जो सुनने वाले थे वहाँ पे बस और लोग भी नहीं स्टूडेंट एनसीसी यूनिट और एनएसएस यूनिट बैठी थी उसमें से मैं भी एक था जो सुनने आया था कि मोदी जी एजुकेशन पे क्या कहेंगे जो नीट पे ये बवाल हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनने आए थे ना कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने आए थे उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करने का कोई हक ही नहीं है हक की बात नहीं है उन्हें
0: तो आप कह रहे हैं दिमागी नक्सल पॉलिटिकल एजेंडा है
9: पॉलिटिकल एजेंडा है उन्हें ये सब अगर टारगेट करना था तो पॉलिटिकल रैली में करते ना कि लाल किला से
0: क्योंकि
9: स्टूडेंट सुनने आए
0: अभिजीत आंसर दीजिए This seems more like a political agenda, says this young man, than something that That's should have been said on Independence Day. That's what Tehsin also said.
7: Can you zoom in on this? This is political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She said this in...
1: Political rally in Kolkata, Indira Gandhi saying foreign hand. She went on, this is during peak emergency.
0: No, but he's she saying that political rally mein kahiye, Red Fort se mat kahiye. Independence Day
1: Independence
0: ki speech
1: Day is a political rally, boss. It has always been a political rally.
0: Why are you not saying comparison?
4: Pradeep, ek question. आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. पहली बात तो ये कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है, तो तब तो फिर रेड फोर्ट से पॉलिटिकल जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है इंडिपेंडेंस डे पे? नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा इशू क्या हो सकता है?
9: पहले आप सुनिए, पहले जो एनसीसी यूनिट एनएसए यूनिट आए थे वो कॉलेज के थे.
4: आप वो भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं ना, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी जानते हैं. देश के 180 जिले पूरी तरह से माओइस्ट टेररिज्म से इफेक्टेड थे और आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिकल इशू है? जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं जाने देता, जो अस्पताल नहीं जाने देता, जो आपको मोबाइल टावर नहीं लाने देना, जो आपको टीवी नहीं देखने देता, जो आपको सड़क नहीं लाने देता, वो आपको पॉलिटिकल लग रहा है? और अगर ये पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिकल हर प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, हर प्राइम मिनिस्टर.
0: यू नो, एंड आई आल्सो, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वांट टू गिव इट सम कॉन्टेक्स्ट. वन लेडी फ्रॉम कांकेर एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस एंटायर डिबेट रेजिंग अराउंड दिमागी नक्सल, एंड शी इज समबडी हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड. हर हस्बैंड वाज किल्ड बाय माओइस्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट टॉक ऑफन अबाउट. दीस आर पीपल हु ब्लू अप रोड्स in Chhattisgarh, in Jharkhand, what used to be known as the Red Corridor. They used to pick up men, brand them informers, and slaughter them. After a so-called Jan Adalat, they used to pick up little girls and sexually exploit them, massacre them, leave them pregnant many, very often. Let's listen to this lady from Kanker about what this
10: what she has to say. We want to say that the P. Chidambaram are in social media, we are giving our brain in our brain. अपने पति को है बस्तर में, तो ऐसे कई बहने हैं जो अपने पति को हैं.
0: सो देयर आर वुमेन देयर हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स इन बस्तर इन कांकेर.
2: नोबडी फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू स्पीक फॉर देम वांट्स वायलेंस और वांट्स पीपल टू बी किल्ड. व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? लेट्स बी क्लियर एंड लेट्स नॉट मिक्स अप द टू इश्यूज. What happened with this woman is terrible. Nexalism, violence is bad. At this moment, left-wing extremism, which is Nexalism, is happening in Manipur, where there are Jan Adalats, where people are being killed. At this moment, right now, between two communities, and the situation's quite messed up. And right now, Padmaja, you had interviewed, you've still not got the Nagaland Accord, which, by the way, is also left-wing extremism. Let's come to what they are asking for. What these people are asking for, what he went in hope for, was that the Honorable Prime Minister, after Dharmendra Pradhan went, said that there will be certain amount of solutions that will be given. None of those solutions are specific and they are left wanting for more. For example, I'll be very brief. This idea that if there's a paper leak, you'll suddenly have special courts and in 3 months people will be sentenced. Now, all of you all must ask, and I send this to all the opposition people. The opposition also in our country is so dumb that they didn't ask this question in Parliament. They didn't allow Parliament to function. You know, there in special courts, there are 3 lakh cases pending. Ask the government, where are you getting the judges from? Where are you getting the judges? Are they special judges? Or the judges who rape ka case dekh rahe, acid ka, unko wahan bithaoge? So both are fooling you, the government and the opposition. And that's where these people are left wanting. Now, when they're left wanting and they are asking for their rights, one calls them Gen Z, aap aage lado. Dusra kehta hai, aap dimagi naksal ho. Bhai, inko unka haq chahiye, aur kuch nahi chahiye. Stop calling them names, just give them what is right to them, their dignity.
0: Counter to that, Tehsin, you are right in saying that people went there looking for solutions. But आपको याद होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ने 1 crore लोगों को AI skilling की भी बात की थी. He also said that we are going to provide free of cost coaching, and that is where you were looking for those solutions, right? सबसे बड़ा अब problem क्या है? That not everyone can afford coaching, but solutions were also spoken of. You are saying that he should speak only of solutions, should not bring in the politics. Very quickly, I think this gentleman here has a question.
11: Sir,
0: he has a question,
11: I believe the government shouldn't criminalize dissent. And the opposition shouldn't romanticize extremism. Very we all are abided by the constitution.
2: Brilliant.
11: And ma'am, मैम झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, देर वॉज नो स्टोन पेल्टिंग, देर वॉज नो द पुलिस वॉज नॉट हार्म्ड, वहाँ भी सब स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी, दिल्ली में भी लाठियाँ पड़ी, एंड आई सेकंड टू दैट व्हाटएवर यू हैव सेड,
1: पंजाब देयर गवर्नमेंट बहुत लाठियाँ पड़ी,
0: बट केरला में वाटर कैनन पड़ी, केरला में भी वाटर कैनन पड़ी, केरला में वाटर कैनन पड़ी,
5: एज अ जर्नलिस्ट
0: केरला में एसएफआई को लाठी पड़ी, हां गो ऑन फिनिश,
11: बट मैम ईदर द ऑपोजिशन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी ऑल आर अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, झारखंड के बच्चों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि पुलिस को मारा, ऐसा कोई रास्ता लिया जैसे दिल्ली में हुआ था,
0: व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, सेम कैटेगरी में नहीं डाला जाना चाहिए आपका सवाल,
4: एंड

0: लास्ट डिबेट में भी मैंने यही कहा था।
1: आपका सवाल
2: गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज समर गेलॉर्ड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। माय क्वेश्चन इज सिंपल कि अगर प्रोटेस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट एंड दे आर पीसफुल, तो व्हाट शुड बी द मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू स्टॉप देम? आई डोंट थिंक दे शुड बी लेट देम मार्च इनटू द इनसाइड द पार्लियामेंट।
3: अग्री।
2: तो इफ देयर
3: टू थिंग्स, पहली बात तो ये कि इट शुडंट रीच टू अ पॉइंट कि स्टूडेंट्स हैव टू एक्चुअली फॉर्म अ पार्लियामेंट मार्च। नाउ दैट इट हैज, द गवर्नमेंट शुड पीसफुली एड्रेस द स्टूडेंट्स, आपके मुल्क के बच्चे हैं ये, उनको पानी के बौछार से, किलो वाली डंडों से, डू नॉट क्रिएट दैट वायलेंस अगेंस्ट देम। एंड जहां तक झारखंड का सवाल है, एज फार एज झारखंड इज कंसर्न, द फैक्ट दैट राहुल गांधी जी एक्चुअली स्पोक अगेंस्ट एवरीथिंग दैट द पुलिस इन झारखंड डिड, द फैक्ट दैट एवरी ऑपोजिशन वॉज इन फेवर ऑफ द झारखंड प्रोटेस्ट, द फैक्ट दैट इट
4: right up to here, when I'm walking from here up to here, I'm being totally peaceful. Okay, is this illegal? Yes, because I'm violating the law. What I'm going to do here, nobody knows. Should the police come and stop me? Yes. Will they use violence? Yes. Is it justified when you're already illegally entering? Section 144 is what? It's a general restraining order. You have violated the law. Does it justify police violence? Absolutely.
1: And thanks to your example,
4: it's called law and order.
1: But when we are talking about politics, all of this while we said that this was more about ideologically putting a label on somebody, just like, you know, people have been called Andhbhakt, etc. But here is where the politics comes in. I want to show you all a video that has been put out by the BJP. Now, how do you justify this? Let's first listen to what is this Dimagi Naxal video that now the BJP has put out.
5: Who is a Dimagi Naxal?

0: इज अ दिमागी नक्सल. अभी तक तो हम कह रहे थे टिल नाउ वी वर सेइंग दैट दिस इज एनीवन हु आस्क्स फॉर एन आर्म्ड.
1: यू अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द राइट विंग. दे डोंट रीड इनफ. व्हेन दे रीड ऑल द रॉन्ग बुक्स. दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कंफ्यूजन, सिवियर आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन. दिस इज अ स्टूपिड वीडियो. इट्स अ कैची वीडियो बट इट्स अ स्टूपिड ब्रेन डेड वीडियो.
2: फॉर वंस आई एग्री विद यू.
0: ये तो आपने पॉलिटिकल कर दिया ना इसको. अभी तक आप कह रहे थे दैट वी आर अगेंस्ट दोज हु आर अगेंस्ट द कंट्री. नाउ यू पुट ऑल ऑफ देयर पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन दिस वीडियो एंड सेड अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एंड अभिजीत दिपके. ऑल दिस व्हाइल यू सेड वी डोंट केयर फॉर अभिजीत दिपके. नाउ व्हाई हैव यू पुट हिम ओवर देयर?
3: पद्मज इसमें चिदंबरम का डालना चाहिए था, जरीवाला जी का डालना चाहिए था, केजरीवाल का डालना चाहिए. जिसने खुद कहा कि मैं दिमागी नक्सल
2: हूं,
3: लेकिन जिसने नहीं कहा मैं दिमागी नक्सल हूं उसका वीडियो नहीं डालना चाहिए. दूसरा, एक बहुत शानदार रैप सॉन्ग दिमागी नक्सल पर ही है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं, जो नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो इस देश में हर चीज में जाति धर्म की अराजकता कराते हैं. आपको कोई तरीका क्रिएटिव खोजना चाहिए. लेकिन मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप सीधे सीधे देश के विपक्षी नेताओं को कहें
2: मेरा सवाल इज विद द प्राइम मिनिस्टर. फॉर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई वुड ही ब्रांड एनीबॉडी एज अ नक्सल टू बिगिन विद, नंबर वन. नंबर टू, फिर वो नक्सल कह किसको रहे, प्लीज इसको भी स्पष्ट कर दे, बता दें कि
0: तो किसकी तरफ मुखातिब
3: खुद बता रहे
2: हैं. और तीसरी बात, अगर आप सारे नेताओं को, तमाम ऑपोजिशन को अगर आप एक ही वीडियो में डाल के सारे लोगों को एक ही लाठी से आप हकाल रहे हैं, तो दैट क्लियरली शोज विच प्रूव्स माय पॉइंट इन द बिगनिंग. जो मैं कह रही थी कि आई एम अ प्राउड दिमागी नक्सल बिकॉज आई रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन विच एवर पार्ट दैट मे बी. अ प्राउड ऑपोजिशन, अ प्राउड दिमागी नक्सल एंड अ प्राउड Muslim who says that I'm a dimagi nakhsa.
1: Because
0: okay, देखिए ये वीडियो आते कैसे नई ऊर्जा आ गई हुड़ा जरी वाला.
1: Because Huda here has said that she's a dimagi naxal. Can I just run a quick defense of P. Chidambaram? See, even within dimagi naxals there is two strains. Huda who believes she's a dimagi naxal, and Chidambaram. One second, let me finish. Chidambaram, who is nowhere near a naxal, if you know him in private, he's an arch capitalist. He will say he's a naxal. Do you know why? Because in order to backstab somebody, you first need to get behind them. So he will claim he's a naxal, and then he will do what? He will destroy them from within.
0: And you said that you are going to vote him for prime minister.
1: I will totally vote. I am boss. I am team Chidambaram. He is not a naxal. He is the biggest hawk on nuclear bombs. He says the exact opposite so that people believe he's a peacenik. So when he does it, it's no, nobody can question it.
0: Hamza Chidambaram. Yes, go on. Very quickly, 30 seconds. You have time for a question. 30 seconds.
4: Panelists, my name is Ashwin Krishna. I am 5th year law student. So my question is pertains to generally all the panelists. So don't you think it's high time that we start respecting the youth of our country?
2: Thank you.
4: The CGI comes and says these are the cockroaches of the country. No. Prime Minister sometimes says, referring to uncleared version of Dimagi Naxals, and they haven't done much for the educations. Yesterday I was reading a parliamentary panel's report. It said that 73% of the students appearing after the primary education, they drop out of the secondary education. And these shows that they don't respect our youth, they don't do anything for the education, and clearly they don't justify what Dimagi Naksal about it.
1: There's a very specific answer to that. You see, first of all, this the very first point you raised, which was why don't we respect the youth? You do respect the youth. The problem is there is complete rot in your education system. Like he said, both the opposition and the government are making fools of you because nobody is actually talking about the real problem. Okay, this is number one. Number two, understand, with youth, they will always see everything as an insult. I remember when my mom used to tell me certain things, I'm like, "Arey yaar, ye fuddy duddy uncle, auntie, mummy, papa, log, they don't this thing. This is natural." This now, who is the one, according to you, who's specifically insulting the youth? Because see, I don't think anybody takes the youth lightly at all, ever. Especially not in India, where they're a huge voting demographic. So nobody has ever taken them for a ride. But I think it is also very important to understand that you have to work within the ambit of the law.
5: I think so. I'll tell you why the youth feel that they're being taken for granted. Like I said earlier, the opportunities that you have in privilege, and it's both in government and opposition, you guys don't have. For example, let's look at NEET, okay? And I'm going to be very personal. I hope this is not edited. Aap kitni bhi mehnat karte, aap doctor ban jao. सारा पेपर लीक हो गया, यू गेट ऑल दैट. चांसेस अगर आप बिहार से हो, नीतीश कुमार का बेटा आपका शिक्षा मंत्री, आपका स्वास्थ्य मंत्री होगा, एंड ही इज देयर बिकॉज ही नीतीश कुमार का बेटा. सो आई विल टेल यू द प्रॉब्लम इज, और आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन, आप किसी भी 10 सेकंड दीजिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में, एक स्पोर्ट्स बॉडी को मतलब किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी को देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर सारे नेता उनके बच्चे बैठे हुए, उनको मैं बीजेपी को अटैक कर रहा हूं, मैं बीजेपी, जस्ट गिव 10 सेकंड, आई गिव 10 सेकंड. वो महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में रोहित पवार क्यों एक क्रिकेट बोर्ड में, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा क्यों एक क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या. एंड सो यू सी व्हेन यू गाइस टुडे आर सीइंग दैट पीपल आर कमिंग एंड टचिंग देयर फीट, अरे दादा, अरे साहब आप बन गए, एंड यू गाइस डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी. इट इज ब्रीडिंग अ डिवाइड व्हिच इज ग्रोन मच मोर. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी दैट द ज्योतिरादित्य सिंधिया.
3: कोई कुछ भी कर ले, राहुल गांधी के सामने सब कुछ झुकना पड़ेगा ना.
5: मैं कह रहा हूं,
3: राहुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. राहुल गांधी के सामने कोई कांग्रेसी कितनी भी मेहनत कर कुछ नहीं कर पाएगा, ये मुश्किल है
2: ना. तो जवानी जिस ओर चलेगी, जमाना उसी ओर चलेगा. आई थिंक दिस वेरी पैथेटिक वीडियो वाज,
3: चलेगा नहीं, चल रहा है, चल रहा है.
2: गवर्नमेंट गवर्नमेंट का
3: तरीका
2: जन अल्फा, क्लियरली दे आर फेलिंग massively at it, monumental failure ye dikha raha hai unka, darsha raha
0: hai. You know, at the end of the day,
2: the opposition is with the janta,
0: not just the youth, every single citizen, the people of India should demand respect, should demand what the government owes them, but also be mindful that in the course of doing that, are you being in any way being influenced or brainwashed, and is there an attempt to try and create Dimagi Naxals? You've heard enough from here, but thank you very much as always to this lovely, lovely group of young people here, and as always to our panelists. And thanks very much for joining us here, because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching. Thank you.

0: Welcome back and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोले।
1: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडिया है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो, जो तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलीश बोले तो अच्छा लगा।

0: ना बुरा लगा, बुरा लगा।
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल। और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
2: मेरा बनते।
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
0: जय
2: जन गण मन जन गण।

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: our top focus on NDTV right now. Now for a very disturbing story that we're starting from, and this is from Vishakhapatnam. It's the death of a six-year-old UKG student. His name, Pranay. It has shocked India. The toddler's family alleges that he was beaten by his teacher for not completing his homework. The family says the boy was healthy when he left home and that he later collapsed inside the classroom after allegedly being hit with a stick. They claim CCTV footage from the school shows the teacher hitting and frightening the child before he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया है, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है। यहाँ पर हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
2: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
3: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत

0: हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं। आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती।
1: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम। ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
0: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए।
1: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। वीआईपी मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
0: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए।
1: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
0: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीजें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
1: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है ये, लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए। इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर, इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हमें उनको पूछता हूँ कि मेरा या ठिकाने जाए चाहे, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा, मराठी में मज़ा जवाब बोलतो है, मीटर लावू का, हाँ मीटर चालू के लिए है, एक्सेस स्टैंड कुठे आहे, तो जवळ आहे, समोर आहे। तो असे दोन, ये जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस है उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सैटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं।
2: In other news, US ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the US may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir. That's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the US ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: We know that it's very good that he's saying it, but this is something we've been insisting for a long time.
6: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
7: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है।
8: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but it has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
2: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song.

0: Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
1: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था. आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है. इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है. कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है. वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे. आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है.
2: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस. अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है.
3: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक. इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपाल आचार्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब है. इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ. ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं. ये हैं असली देश के दुश्मन. हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे.
2: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
3: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है. इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है.
2: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है.
3: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया. अब
0: slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Well, tracking more updates coming in at this hour. A video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimark checkpost in Dras after local police stopped the travel on Minimark Zojila Sonmark Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
6: Welcome back, and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
7: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
8: Kya bola tha,
7: bol do. Kya main kya
8: bola tha?
7: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं. कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
9: ए भैया.
7: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल. आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन.
9: हम इंडियन हैं.
7: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
8: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के. तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया.
7: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
8: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
9: बुरा नहीं,
7: नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो. और टिंकल हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल। और टिंकल आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
9: मेरा अब पुलिस बनते।
7: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
9: जय जन मन जन का।

0: he collapsed. The family also alleges that other children had been subjected to physical punishment as well. Police have now registered a case and launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई नहीं
2: हिलेगा। आपने उकसाया पब्लिक को,
1: हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी वादा था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
3: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z, you know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर नहीं रही।
3: जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं, हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज्ड जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जा

0: आएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेज, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुँची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीज़ें करूँगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफ़ी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज़ को बंद किया जाए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए,
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ, और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions, pardon me, in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new

0: motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
1: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्जाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए. इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. तो इसमें हम मैं उनको पूछता हूँ कि मेला या ठिकाने जायचा है, तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा मराठी में जब हम बोलते हैं मीटर लावू का, हाँ मीटर चालू के लिए आहे, रिक्षा स्टैंड कुठे आहे, तो जवळ आहे समोर आहे, तो ऐसे दोन ये जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस है उनके अंदर हम उनको पूछते हैं, उनको उन्होंने उसमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं.
0: In other news, U.S. Ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high-profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the U.S. may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir. That's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
2: Everybody here knows I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
3: You know that it's very good that he's saying it, but this is something we have been insisting for a long time.
4: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
5: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान, तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है. हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा.
6: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but there has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
0: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
7: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
8: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है, मुस्लिम लीग है।
9: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम? जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
8: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
9: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
8: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
9: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
0: Slipping into a very short break, I'm right back. Lots more lined up.
10: I'm in Ahmedabad's Gift City today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York, or London when it comes to being an international center of finance?
11: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
10: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
11: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication, or NRIs.
10: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
12: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
10: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
12: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out? Right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
10: अरे हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट एचएसबीसी टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दीस कुलचास।
12: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में, पहले तो ये कुलचे भी नहीं थे, अभी कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।
13: अ वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चंस, आइडियाज दैट चैलेंज द ऑर्डिनरी, कन्वर्सेशंस दैट कनेक्ट कंट्रीज एंड कल्चर्स, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.

0: Welcome back, and shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hai, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोल रहे हैं।
1: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडियन हैं।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल?
3: हाँ।
1: और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?

0: मेरा बुकिंग बनते हैं।
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ ट्विंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।

0: And shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hai, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main kya
2: bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोल रहे
1: हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडियन हैं।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था, आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो है टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलिश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
3: मेरा अबू पुलिस बनते हैं।
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: Yeah,
3: na na man, yeah.

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: launched an investigation, while the exact cause of death will be established through postmortem. Meanwhile, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has gone viral. The woman was left waiting near the Minimarg checkpost in Dras after local police stopped travel on the Minimarg Zojila Sonmarg road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in the video, she can be heard arguing with army personnel, saying that we are Gen Z and that we will not tolerate this nonsense, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online.
1: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई नहीं हिलेगा।
2: आपको
1: हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना।
0: Well, this lady in this video has now spoken to NDTV's managing editor Shiv Arur. Take a look.
3: What happened? Because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, we are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries. There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी, उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है, वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहां पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया, वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई, मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए, हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है? लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर, मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहा।
3: जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है, ये आपके शब्द हैं। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन ज़ी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस, और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी

0: ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये एक महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है।
1: जी हाँ, मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फ़ोन ओपन है। बट जब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर VIP मोमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहाँ सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है, वहाँ की पुलिस को भी सॉरी बोला था। अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुँची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीज़ें करूँगी। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफ़ी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार, कृपा करके इस चीज़ को बंद किया जाए।
0: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज़ में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
1: पब्लिक के लिए, सर हमारे लिए,
0: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपकी परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं इस ये सब वायरल होने के बाद, उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
1: सर वो सब लोग, उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ। मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली, तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
0: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: Moving on, shifting our focus to other news now, Maharashtra has now started a statewide drive to check whether auto rickshaw and taxi drivers have a working knowledge of Marathi. RTO flying squads are carrying out checks, asking drivers basic questions in Marathi to assess their language skills. The drive follows the new motor vehicle rules requiring public transport drivers to have a working knowledge of Marathi. Drivers who fail the oral Marathi check are now being issued notices and given 1 month to learn the language.
3: ऐसा हमारा सिलेबस फिक्स है मराठी एग्ज़ाम का वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए. तो इसके अंदर एक पैसेंजर और एक ड्राइवर इनका कॉन्वर्सेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. तो इसमें हम मैं उनको पूछता हूँ कि मेला या ठिकाने जाए चाहे तर उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि या बसा मराठी में मैं जवाब बोलते हैं मीटर लावू का हाँ मीटर चालू के लिए है एक्सा स्टैंड कुठे है तो जवर है समोर है. तो ऐसे दोन ये जो 15 क्वेश्चन का सिलेबस है उनके अंदर हम उनको पूछते हैं उनको उन्होंने उसमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया तो हम उनको पास करते हैं.
2: In other news, U.S. Ambassador to India Sergio Gore is in Jammu and Kashmir making a high-profile visit that has drawn attention in New Delhi and Islamabad as well. Gore described Jammu and Kashmir as an important part of India, praised the government's steps in the region and indicated the U.S. may reevaluate its travel advisory. Well, Congress has now welcomed Gore's remarks, saying that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that nobody needs to remind the country of this. Pakistan has reacted sharply, summoning the top US diplomat and lodging a formal demarche over Gore's comments. This is the first visit by top US diplomat to Jammu and Kashmir. That's after Operation Sindoor and the abrogation of Article 370.
4: Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer.
5: We know that that's very good that he's saying it, but this is something we have been insisting for a long time.
6: Kashmir is an integral part of India, and they must revalidate their, you know, travel advisory. It's part of India, so US should realize.
7: देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, एक अंग है हिंदुस्तान. तो उसको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी और को याद दिलाने की जरूरत नहीं है. हम लोग मानते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा.
8: Well, I mean, the visit is significant because this is the first time that we've had a U.S. ambassador travel there since Operation Sindoor. There have been previous U.S. ambassadors that have visited the region, but there has been some time. And I think particularly in light of the fact that the Trump administration has taken a bit of an unconventional approach to the issue in terms of President Trump repeatedly claiming that he mediated the ceasefire between India and Pakistan last year, and also given President Trump's comment last year that he would like to help the two sides, find a solution to Kashmir. You know, these are things that are very unusual for U.S. policy. So against that backdrop of an unconventional administration, I think it was it's notable that we have the U.S. ambassador traveling to Kashmir against that backdrop.
2: Meanwhile, the political row over Vande Mataram has intensified, with the Congress asserting its stand on the national song. Union Home Minister Amit Shah has now launched a scathing attack on Congress and said that Congress opposed Mataram in 1937 for appeasement politics, and now they're doing it again. He also urged people to unite against Congress's move. And this, of course, comes after, at the CWC meeting, sources say a resolution was passed on this very issue, with a consensus to sing the first two stanzas of Vande Mataram. The party is also likely to issue a fresh statement referring to the 1937 CWC resolution. Congress said that the party would abide by the decision taken by its leadership in 1937 and that there was no confusion over its position as well.
9: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
10: सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को दोहराया गया कि जो 1937 का वंदे मातरम पर जो रेजोल्यूशन था पहले दो अंतरे गाने का, वो उसी का पालन करेगी कांग्रेस। अब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है।
11: क्या देश के नायक कौन है? बीजेपी है इस देश का नायक। इस देश के नायक सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब हैं। इनके खिलाफ जाएंगे हम, जाएं जिनको जाना है उनके खिलाफ। ये तब भी इनकी खिलाफत करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी कर रहे हैं। ये हैं असली देश के दुश्मन। हमें इनसे लड़ना आता है, पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे।
10: आप अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि
11: नहीं, परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है।
10: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नई मुस्लिम लीग हो गई है।
11: अरे छोड़िए, ये संघी लोग, देश के दुश्मन, गद्दार लोग, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनको इस देश से निकालना जरूरी हो गया अब।
2: Slipping into a very short break, I'm right back. Lots more lined up.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
16: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
17: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: Across the country.
19: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: And shifting our focus to a viral story of a young girl from Itanagar in Arunachal Pradesh, which has now gone viral after she spoke out against being called Chinese because of her appearance. Her emotional response, firmly asserting that she is Indian, has once again highlighted the racial stereotypes faced by people from the Northeast. Take a listen.
1: 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country, and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle. Or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, aapne dekha aapka video itna viral ho gaya hai India mein? Aapne dekha wo? Us video mein aap kya bol rahe hain, Tinkle?
2: Kya bola tha,
1: bol do. Kya main
2: kya bola tha?
3: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोल रहे
1: हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज? आप तो इंडियन हैं। कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज?
3: एक भैया।
1: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल, आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन।
3: हम इंडिया है।
1: आयुम जी, ये आइडिया कहाँ से आया? टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनकी उसके मन में क्यों था ये?
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था, तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो, तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था, तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है, ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के, तो टिंकल को दुखी हो गया, तो टिंकल ने वीडियो बना लिया।
1: टिंकल, आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
2: आपको आदमी शैलीश बोले तो बच्चा लगे ना, बुरा लगा?
3: बुरा नहीं,
1: नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल, आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
3: मेरा अब पुलिस बनते हैं।
1: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
2: Yeah,
3: na na man. Yeah.

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, जय हिंद,
1: थैंक यू, थैंक यू,
2: बाय बाय।
3: On that note, we slip into a very short break. Come right back, lots more lined up for you here on NDTV.

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Thursday night with me, Shiv Arur. As always, it's amazing to have you. We've got a big follow-up tonight on a story that everyone is talking about, whether you're triggered or whether you want to see what happened to the girl in that video. She has joined me today and spoken only to me today. That's what NDTV stands for, when it really matters. Let's get you straight to the top stories at 9. Like I said, the lady in that viral Ladakh tourist video has spoken to me, and you're going to see her entire interview right here on India Matters. She apologizes, says she has been depressed since then, watching the viral fallout of her obnoxious rant against the Indian Army and the forces. Supreme Court forms panel to examine use of force by the police in Delhi's July 20th protest. 5-member committee headed by former Supreme Court Judge R. Subhash Reddy to conduct an independent inquiry. Home Minister Amit Shah slams the Congress's Vande Mataram 2-stanza stand, calls Congress anti-national, says insulting the national song and the nation is the Congress's only agenda. Tamil Nadu Chief Minister Vijay raises the NEET issue as well as questions delimitation during Home Minister Amit Shah's South huddle. D.K. Shivakumar raises the Mekedatu dam issue. Former Tehelka Editor-in-Chief Tarun Tejpal has moved Supreme Court, challenging the Bombay High Court's verdict that upheld his conviction and sentenced him to 10-year rigorous imprisonment in the 2013 rape case. He is supposed to surrender by the 3rd of September. Coming up on the show tonight, you're about to watch the only response and only interview of the woman who was caught on camera in a viral rant in Ladakh. You'll hear her apologize. You'll hear her side of the story. No matter where you stand, it's the story that's gone the most viral this week. And you will see it only here on India Matters in just a moment. Also coming up, the war over Vande Mataram between the Congress and the BJP. It has exploded now with Amit Shah himself stepping into the ring. I ask, are there no bigger battles to fight? Why has this occupied so much mind space? The big face-off comes up, and I have a surprise for you right at the end of tonight's India Matters. Thanks as always for being with me. Let's get you straight to our top story. I know you don't need reminding, viewer, because you watch India Matters every night. But yesterday on this broadcast, we asked some tough questions while putting the spotlight on a story that went beyond just the virality of what people saw in it. We critiqued this viral video of a young woman confronting security personnel in Ladakh, screaming, "We are Gen Z," as if it gave her the license to expect entitled privilege. We questioned the tone, the confrontation, and the optics of taking on men in uniform who are stationed in one of the most unforgiving terrains on earth to keep this country safe. Many agreed with us. Many pushed back. Today, that same young woman is on our show. She spoke only to me, giving her version of what really unfolded on the ground. Television news cannot simply be about picking a side, delivering a lecture, and shutting the door on the other perspective. And on NDTV, we always return to the story when it really matters. Our security forces deserve unyielding respect that is non-negotiable. But citizens, especially young people in sensitive regions, have voices, frustrations, and context that raw social media videos often leave out. We didn't soften our questions today. She didn't hold back her answers. Here she is, live with me.
1: We are not tolerating this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो
2: चलो
1: कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो।
2: वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे हो?
1: हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर।
3: And speaking out for the first time and joining me live here on NDTV for the first time since her video from Ladakh went completely viral is the woman who was on camera having that big angry meltdown after there was a road closure for a few hours in that forward area. Madam, at your request, we are not taking your name out of respect for your request. But I would like to start by asking you what happened, because this video is viral. You are seen on camera, you know, shouting at security personnel, saying things like, "We are Gen Z. You know, how dare you do this? My taxes pay your salaries." There is a lot of anger that has come out, madam, over that video. I want your side of the story. What happened? Tell us.
4: Hello. उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है. उसमें मैं हूँ और मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ. इवन मैं फ्रस्ट्रेट होके बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ. और पहली बात ये कि ये वीडियो एक मंथ पुरानी है जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली. उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे. हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है. हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें 3-4 घंटे वहाँ सुबह से वहाँ पे वेट करते हुए हो गए. फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा. उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा. फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया. वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए. तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ. हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए. हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की. उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई. मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे. आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है. लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर. मैं कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती.
3: जी जी बिल्कुल मैडम. लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो जो जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है. ये आपके शब्द हैं. हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम. ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है. उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन ज़ी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, यू नो माई सैलरीज पे योर टैक्सेस. और एंड इन दिस वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं. तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है. मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि कोई किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए. वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है.
4: जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ. क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था. क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा भी फोन ओपन है. बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि गलती हमारी है. अगर VIP मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, प्रेस्टेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया. मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है. वहां की पुलिस को भी सॉरी बोला था. अब मैं दोबारा आपके माध्यम से सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, J&K की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को, उन्होंने ट्वीट करा था, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची, जबकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरी वजह से देश की जनता या किसी को भी कोई ठेस पहुंचे. क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर या कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ कि मैं पॉपुलर होने के लिए किसी के साथ ऐसी चीजें करूंगी. मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, 25 साल की लड़की हूँ. मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ. कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार. कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए.
3: मैडम बिल्कुल. और आप NDTV पर बोल रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा TV नेटवर्क है. तो जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, ये जो वायरल वीडियो देखा है, आपकी ये जो माफ़ी है, आपकी ये जो रिग्रेट है, सब देखेंगे मैडम। मैं इसलिए आपको इस नेटवर्क पे नहीं बुलाया हूँ कि आपको आप पर शाउट करूँ या आपको स्कोल्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक सिटीज़न है मैडम, आपने जो फ्रस्ट्रेशन में किया है वो ऑलरेडी वायरल जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक मौका है कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ था। क्योंकि और मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि
4: जी सर,
3: सबको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मैडम, किसको yes. नहीं होता है, वीआईपी मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट को लेकर किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है ना,
4: तो जी हाँ।
3: और, लेकिन कुछ शब्द जब हम बोलते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसी माहौल में बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। ये तीन शब्द जो आपने बोला, वी आर जेन जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपने ये शब्द क्यों चूज़ किए, वी आर जेन जी, ये माहौल जो चल रहा है जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर, इसलिए आपने चुना वो शब्द?
4: सर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो वर्ड अचानक से आ गया, क्योंकि पीछे से बहुत लोग प्रोवोक कर रहे थे मेरे को कि हमारे साथ ये सब चीज बहुत होती है, आप लोग टूरिस्ट हैं, आपके साथ पहली बार हुई, आपको फेस करनी पड़ रही है, हम लोग रोज ये सब चीजें फेस करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को बताई। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलूंगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये चीज अचानक से हो गई। तो मैं अब क्या बोली इस चीज को, मेरा कोई अटेंशन नहीं था कि जेन जी का नाम लेके मैं कोई चीज ऐसा करती, ये बस गलती से चीज हो गई है सर।
3: देखिए मैडम, जब हम इमोशनल और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बात निकल जाती है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये सब क्यों बोला। क्योंकि देखिए मैडम, हम भी ऑनलाइन होते हैं, हम भी गाली खाते हैं ऑनलाइन, और आपने इस 24 घंटे में बहुत कुछ देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्या क्या लोग yes, बोल रहे हैं आपके खिलाफ yes. मेरे शो कल मेरे शो पे भी कुछ वेटरन्स थे जो आपके लिए कुछ मैसेज दिए थे, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कश्मीर में ये हुआ और अब ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका गुस्सा था, आप एक पॉइंट यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, इसलिए आपके गुस्से में ये बोला।
4: सर वहाँ पीछे से लोग बोल रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो, आपको ये सब फेस पहली बार करना पड़ रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, हम लोग रोज ये चीज फेस करते हैं उस वीडियो में, लेकिन वो चीज किसी ने दिखाई नहीं है जो पीछे से वहां जनता बोल रही थी, स्पेशली मेरे को टारगेट करके, मेरे को ही एज अ गर्ल मेरे को इतना बदनाम किया गया है, विक्टिम बनाया गया है, कि मैं उसके खिलाफ अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें नहीं आती कि मैं वायरल होने के लिए ये करूँ वो करूँ, मेरा कोई पब्लिक फिगर ही नहीं है तो मैं क्या वायरल होंगी सर, आप बताइए। मैं माफीनामा के लिए भी आपके चैनल के थ्रू ये चीज भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना माफीनामा भी कहीं से अपलोड कर सकूं, इसलिए आपके माध्यम से मैं देश की जनता से जिनको बुरा लगा है उनसे भी सॉरी मांग रही हूँ, अपने इंडियन आर्मी से भी मांग रही हूँ, जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्रीडमली जीते हैं, अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग तो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सर मैं इसलिए आपके माध्यम से आगे अपनी माफी पहुंचाना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर।
3: क्या आप जेन जी जो जनरेशन है मैडम, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतना जो वायरल हुआ है, बहुत ऐसे जेन जी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन जी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसको इसके खिलाफ हैं ऐसे बिहेवियर का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जेन जी को बदनाम करने के लिए प्लांट हुआ है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है मैडम आपके बारे में, ये सब बोला जा रहा है, तो इसका रिप्लाई क्या देंगे आप?
4: सर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या रिप्लाई दूं आपको, लेकिन जेन जी का जो मैंने वहाँ नाम लिया था वो मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था या किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया था, वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेन जी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है एक महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड। जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे को क्या मतलब बनता है कि मैं वहां पे उस सिक्योरिटी जो वो थे वहां पे लोकल पुलिस में उनसे जेंजी बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं था कि मैंने जेंजी को पॉइंट किया या किसी और को पॉइंट किया। मेरे बारे में लोग इतना गंदा कॉमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कॉमेंट कर रहे हैं, जिससे मेरी फैमिली मेरा सारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है उस चीज की वजह से। इसलिए मैं आपके चैनल पे आई हूँ, जबकि मैं मेडिकली और फिजिकली अभी फिट नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ। बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, बोलना जरूरी है, वरना लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ।
3: पहले तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि आप प्लीज रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए। ये सब होता रहता है मैडम, ये इस सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ जो वायरल होता है एक दो दिन के लिए होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो मैं आपको बोलना
4: सर,
3: चाहता हूँ,
4: मेरे साथ पहली बार हुई तो इसलिए थोड़ा मैं मेंटली बहुत हैरस हो गई। इवन मैं कल 19 तारीख को मैं साइबर क्राइम भी गई थी, मैंने वहां भी कंप्लेन दी कि सर मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। वहां मेरे को पैनिक अटैक आ गया, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मेरे को रिसीविंग कंप्लेन भी दी कि जिसने भी आपका वीडियो इस तरीके से डाला है विदाउट परमिशन के, या आपने जो भी वहां चिल्लाया, लेकिन आपका वीडियो इस तरीके से नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि गर्ल्स की प्राइवेसी, मेरा फेस हाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन मेंटली इतना हैरेस हो गई कि उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुला ली थी, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी।
3: मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं आपको मैडम कि जो वायरल हुआ है वो हट नहीं सकता है। अब आप भी जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर नहीं हो, ये ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है मैडम, आपको भी पता है कि वो वहीं पे रहता है, वायरल हो जाता है, लोग बात करेंगे उस पर, गुस्सा करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप सब आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है मैडम, ठीक है, आप कोई विलन नहीं हो। जो कुछ भी हुआ है, आप इमोशनल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि दो तीन दिन बाद ये हट जाएगा, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया है, आपने अपने शब्द के लिए रिग्रेट व्यक्त किया है, आपने माफ़ी मांगी है इंडियन आर्मी से। और देखिए, जब हम शो करते हैं NDTV पर, इंडियन आर्मी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगा है, वो समझते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन। कल हमारे शो में इंडियन आर्मी के वेटरन्स थे मैडम, उनका बोलना था कि हम समझते हैं नागरिकों का फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं, तो इसलिए सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम, क्योंकि एक एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम, तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम।
4: मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और J&K की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए।
3: और मैं आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ मैडम कि आर्मी में कोई गुस्सा नहीं है आपके खिलाफ, कोई भी गुस्सा नहीं है, वो पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको कोई मज़ा नहीं आता है मैडम रोड क्लोज करने में, डिले करने में, ये फॉरवर्ड एरियाज में ये सब करने में कोई भी मज़ा नहीं आता है। VIP मूवमेंट्स या सिक्योरिटी मूवमेंट्स, ये एक इनकन्वीनियंस है सबके लिए, और अल्टीमेटली आर्मी किसके लिए काम कर रही है मैडम, देश के लिए,
4: पब्लिक के लिए सर, हमारे लिए।
3: लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन, मैं भी एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं, हम सब इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, आर्मी ये समझती है मैडम, ये बिल्कुल समझती है। मैं आखिरी सवाल आपको मैडम, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स वो ठीक हैं, इस ये सब वायरल होने के बाद उनका क्या मेंटल स्थिति है, वो क्या बोल रहे हैं आपको?
4: सर वो सब लोग उन्होंने फोन करके मुझे इतना सुनाया कि कहने लग गए कि तू तो कभी भी ऐसे ऑनलाइन कभी कोई चीज नहीं करती, तू तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, उस दिन क्या हो गया तुझे, तू तो कभी इतने तेज बात भी नहीं करती, किसी से लड़ती भी नहीं है, मतलब मैं ऑलवेज ज्यादा सपोर्टिंग रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं जिनको लोग स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं मैं उनकी हेल्पिंग करती हूँ ऑलवेज। तो उन्होंने बोला तेरा हेल्पिंग नेचर है तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली। मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया कि ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, मुझे भी पीछे से बोला गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करते वैसा करते, उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो उसके लिए मैं इसलिए बहुत सॉरी हूँ, मेरी फैमिली बहुत मेंटली बहुत इस टाइम डिस्टर्ब है क्योंकि वो हैरस हो चुकी है, सारे रिश्तेदार जितने आस पड़ोस सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस वजह पे, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे लोग बहुत बहुत चीज़ें बोल रहे हैं जबकि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनको व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए वो मुझे यूज कर रहे हैं कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश की जनता और अपने जवान भाइयों से माफी मांगनी थी आपके माध्यम से, वो मैंने मांग ली तो मेरे को अब थोड़ा बहुत दिल को सुकून है कि मैंने ये चीज करी।
3: मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक दो दिन की बात है, ये लोगों को गुस्सा आता है जब लोग ऐसे तस्वीर देखते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए जो आपने दिल से माफ़ी मांगी है, क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूं और NDTV पर आपकी बात रखी जाएगी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
4: थैंक यू सर। थैंक यू।